You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है. Cool Song.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:08 हो रहे हैं और यहाँ पे रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम पे मैं पहुंच चुका हूं आपका मेजबान सुदेव। और देखिए भाई, 4 घंटे एक साथ बैठेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो वक्त बिताने का हमारा सिलसिला यहाँ पे शुरू होने वाला है। अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए 3311063 पर। मुझे मैसेज कीजिए, बताइए अपने आज के इंटेंशन के बारे में, इरादा क्या है बताइए, साथ ही साथ अपने गुड मॉर्निंग कोड्स मैसेजेस मुझे भेजिए 3311063 पर। तो फिर इंतजार किस बात का जानी, कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए और फिर से याद दिला रहे हैं हम, भाव मुझाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, आपके हवाले ही है और क्या। बट एक और बहुत क्यूट सा गाना जो है थोड़ी देर में आपके रेडियो सेट में प्ले होने वाला है।
1: तेनू एक एक प्यार कर दी, तेनू चढ़ के चुबार तक दी।
0: मगर फिलहाल यहाँ पे शो की शुरुआत करेंगे हम फहीम अब्दुल्ला और चिन्मई की आवाज में। तो चलिए डकॉइट मूवी का गाना सुनते हैं फहीम अब्दुल्ला और चिन्मय की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है भाई थोड़े मैसेजेस आए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। आसमा का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि इट्स नॉट सेल्फिश टू एंजॉय लाइफ, व्हाट सेल्फिश इज टू इंसिस्ट ऑन बीइंग नेगेटिव डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज अवेलेबल टू यू। गुड मॉर्निंग करके, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया बात एक्चुअली कही है यहाँ पे। और जब भी हमारे पास पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज आते हैं, वहां पे भी अगर हम नेगेटिव होने की बात करेंगे या फिर डाउट मन में रखेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आसमा। और जुल्फी भाई का मैसेज आया है, और उन्होंने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू बी हैप्पी, इट इज टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, टू हैव इट, मेक डिफरेंस दैट यू हैव लिव्ड एंड लिव्ड वेल करके। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है हमारे पास, और उन्होंने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है, गुड मॉर्निंग, मे गॉड स्माइल ऑन यू एंड टेक गुड केयर ऑफ यू टुडे, विशिंग यू अ ब्लेस्ड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। और अबरार भाई का मैसेज आया है, उसमें लिखा है, मॉर्निंग, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, यूज एवरी सेकेंड, फील एवरी मोमेंट, बी हैप्पी, Keep smiling and have a good day करके। Thank you so much जी, thank you so much, आपको भी काफी बढ़िया दिन जो है हम wish करते हैं। और भी ऐसे अपने messages जो है आप भेज सकते हैं, अगर आपने अभी भी tune in किया है तो जानी इंतजार किस बात का है, 3311063 ये है हमारा number, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और अपने मैसेजेस के साथ साथ बताइए क्या क्या है आज का इरादा, आज की इंटेंशंस क्या क्या है। थोड़ी देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में, ये परखने के लिए, जानने के लिए कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इन सबसे कितने तेज है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: कुछ ना कहो मूवी का टाइटल ट्रैक हमने सुना, साधना सरगम और शान की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का।
1: रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में आज का सवाल हम जो है पूछेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है और साथ ही साथ थोड़ा ज्योग्राफिकल सवाल है। और सवाल यह है कि इंडिया का लार्जेस्ट ओवरऑल सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है। इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, ये आपको बताना है। मैं एक और क्लू दे देता हूं कि ये जो है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, ये आपको बताना है। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी, और प्रूफ कर सकते हैं कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से कितने ज्यादा तेज हैं। तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और बताइए मुझे सवाल का जवाब क्या है। फिलहाल यहाँ पे मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में आरक्षण मूवी का गाना हम सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मैं हूँ आरजे कशिश, और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार। तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो।
5: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
6: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ।
4: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है।
7: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द, आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप। व्हाई? फर्स्ट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrients inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list, and watch out, the label itself is very tricky. You read on it sugar free. Does it mean sugar free 100%? No, it's not the case.
4: So what do you think about this activity?
7: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
4: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं।
8: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
9: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
10: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.
11: Radio Olive.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई हमारे पास जो है थोड़े मैसेजेस आए हैं और देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या मैसेज आया है। मुझे राहुल जी का मैसेज आया है, राहुल जी ने मैसेज भेजा है चिलिका लेक करके। उसके साथ साथ मुझे वीएसआर मूर्ति जी का मैसेज आया है चिलिका लेक करके। सरिता जी का मैसेज आया है, सरिता जी ने जो है एक ऑडियो भेजा है। सरिता जी आपका ऑडियो घूम ही रहा है, लोड हो रहा है, वो प्ले नहीं हो रहा है। मैं थोड़ी देर में फिर से ट्राई करता हूँ, बट आई होप आपने सही आंसर भेजा होगा। उसके साथ साथ मुझे अभी संधू जी का मैसेज आया है। संधू जी ने मैसेज भेजा है, लिखा है गुड मॉर्निंग कतर हरपाल संधू फ्रॉम दुकान करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग जो है विश करते हैं। मेहरुनिसा जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव, गर्मी बहुत है, नींबू पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे इससे याद आया, गर्मी के टाइम पे जब इंडिया में थे हम, स्पेशली स्कूल के टाइम पे, तो सुबह सुबह 5 बजे उठना होता था। अब यूजुअली मुझे स्कूल जाने के लिए भी 5 बजे ही उठना होता था, बट वेकेशन के टाइम पे 5 बजे उठना मतलब कुछ तो खास है उस दिन। उस दिन क्या खास होता था, उस दिन हम सब दोस्त लोग मिलके, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क था जिसे स्मृतिवन बुलाते हैं, वहाँ जाते थे। ठीक है, वहाँ बड़ा सा ग्राउंड सा हमें मिलता था, एकदम मजे से खेलते थे हम। ठीक है, खुद को धोनी समझ के जाते थे, मगर अच्छा बॉलर आ गया तो फिर हम जल्दी वापस आ जाते थे। बढ़िया, ये सब खेल करने के बाद 5 बजे उठते थे, 5:30 बजे खेलने जाते थे, तो लगा लो 6 बजे से लेके 10 बजे तक हम खेलते रहते थे। 10 बजे वापस आते थे, भरी धूप, दिल्ली की भरी धूप में हम ऐसे वापस आते हैं घर में, मम्मी वहाँ पे बना के रखती है एकदम ठंडा ठंडा रूह अफ्सा या फिर नींबू पानी, और वो रूह अफ्सा या फिर नींबू पानी जब हम पीते हैं ऐसे गटकते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जान में वापस जान आ गई। वो चीज़ें मुझे याद आ गई ये मैसेज पढ़ के। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत हो रही है, और जो भी लोग अभी बाहर हैं स्टे हाइड्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप सभी ने यहाँ पे सही जवाब दिया तो आपके लिए बजेंगी तालियां, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इंडिया का जो लार्जेस्ट ओवरऑल सॉल्ट वाटर लेक है वो चिलिका लेक है, मगर यहीं पे अगर हम बात करेंगे इनलैंड लेक की, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट इनलैंड लेक है, सॉल्ट लेक है, वो है सांभर सॉल्ट लेक जो राजस्थान में है। तो ये भी कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, मगर किसी ने भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं किया, एकदम सही तरीके से यहाँ पे जवाब दिया। तो इसी खुशी में फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: खूबसूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं। और अभी का टेम्परेचर जो है ये हमें देखने को मिल रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। और हवा यहाँ पे बह रही है 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। देखते हैं हवा उड़ाएगी कि नहीं उड़ाएगी, मगर पिघला जरूर सकती है इस गर्मी में। बट हम देखिए गर्म हवा से ही पिघल सकते हैं, ऐसे नहीं पिघलेंगे, क्योंकि काफी सख्त आदमी है जाकिर भाई के हम शिष्य हैं, बट जाकिर भाई को ये नहीं पता। बट हाँ, जरा आप भी मुझे बताइए बाहर का माहौल कैसा है आपके लिए, कोई अच्छे नजारे अगर दिख रहे हैं तो फोटो खींचिए, भेजिए हमें 3311063 पर, और दिखाइए बाहर का नजारा, क्योंकि मैं तो अंदर बैठा हूँ, मुझे बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी आंखें बनिए, जरा मुझे बाहर कैसा है सब कुछ दिखाइए। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, गिनी विद सनी मूवी का गाना प्ले करते हैं अल्तमश फरीदी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है मुझे आसमान ने एक वीडियो नोट भेजा है, बट आसमान ने जो वीडियो भेजा है वो अनसपोर्टेड मैसेज टाइप में आया है, तो आसमान एक और बार भेज दो यार। सॉरी, रियली सॉरी। उसके साथ साथ मैं एक और मैसेज पढ़ना चाहूँगा। मुझे राहुल ने मैसेज भेजा है। राहुल ने बोला, सॉरी फ्रॉम माई डॉटर, दी आंसर वॉज गिवन टू मी बाई माई डॉटर वाइल ऑन वे टू स्कूल, शी एक्सपेक्टेड हर नेम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नाम देखा नहीं था, आपने नाम लिखा नहीं था, बट कोई बात नहीं राहुल, थैंक यू सो मच ये मैसेज मुझे भेजने के लिए। आप मुझे ज़रा अपने बेटी का नाम भेज दीजिए, मैं एक ऑडियो नोट आपको भेज दूंगा मेरा रिगार्ड्स कन्वे करते हुए। उसके साथ साथ मुझे जो है एक और मैसेज आया है दीपक जी का। दीपक जी ने मुझे एक मैसेज भेजा है, एक फ़ोटो भेजा है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो यहाँ पे, यार मुझे लगता है मतार करीम के आसपास का एरिया है ये, और जी हाँ मतलब मतार करीम के पास जो एक पार्क है वहाँ पे है ये, वहाँ का फ़ोटो है, और ये फ़ोटो मुझे भेजा है अफसल भाई ने। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मतलब यहाँ बैठे बैठे आपने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यही बात करते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं, और थोड़ी देर में जब हम गानों के उस पार वापस आएंगे तो हेल्थ रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करेंगे। तैयार हो जाइए, स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबा क्लो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनोम रान। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम रान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: मैं हूँ आरजे कशिश और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार। तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो?
3: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
4: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ।
2: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है।
5: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द। आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप। व्हाई? फर्स्ट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrients inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list and watch out. The label itself is very tricky. You read on it, sugar-free. Does it mean sugar-free 100%? No, it's not the case.
2: So what do you think about this activity?
5: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
2: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं।
6: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
1: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. स्टेशन क्लॉक में 7:30 हो रहे हैं और चलिए यहां पे शुरू करते हैं. फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है.
0: तो फिट है तो हिट है में आज हम बात करेंगे क्रेविंग्स के बारे में. ठीक है, हमने कई बार इंस्टाग्राम में पोस्ट देखे होंगे या फिर कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा कि अगर कुछ क्रेविंग तुम्हें है तो मतलब कोई ना कोई चीजें तुम्हें डेफिशिएंसी में है. बट क्या सही में ऐसा है क्या? मिथ ये है कि क्रेविंग्स का मतलब हमेशा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होता है, बट रियलिटी इससे कुछ अलग है. फैक्ट ये कहता है कि बहुत लोग मानते हैं कि अगर भाई चॉकलेट चिप्स या स्वीट्स की क्रेविंग तुम्हें होती है तो बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है. लेकिन रिसर्च तो ये दिखाती है कि मोस्ट फूड क्रेविंग जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से नहीं बल्कि हैबिट्स, इमोशंस और ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से लिंक्ड होती है. क्रेविंग्स को ट्रिगर करने वाले कॉमन फैक्टर्स क्या है वो जरा हम देख लेते हैं. सबसे पहला है स्ट्रेस. स्ट्रेस के दौरान ब्रेन जो है क्विक एनर्जी फूड्स जो चाहता है, चाहे वो शुगरी हो या फैटी फूड्स हो, उनकी डिमांड जो है बढ़ जाती है. पुअर स्लीप, कम नींद जो है क्रेविंग्स और एपेटाइट दोनों को इंक्रीज कर सकती है. हैबिट्स, आदतें, अगर आप रोज शाम को चाय के साथ बिस्किट खाते हो तो उसी टाइम क्रेविंग ऑटोमेटिकली आ सकती है. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे चाय पीने में. इमोशनल एसोसिएशंस भी होते हैं. कुछ फूड्स जो है कंफर्ट या रिवॉर्ड से लिंक्ड होते हैं, इसलिए मूड के हिसाब से क्रेविंग्स भी आ सकती है. और कुछ रेयर केसेस में, ऐसा नहीं कि भाई डेफिशिएंसी है ही नहीं, ठीक है, कुछ रेयर केसेस में डेफिशिएंसीज भी रोल प्ले कर सकती है. एग्जांपल, आयरन डेफिशिएंसी कभी कभी अनयूजुअल क्रेविंग्स देती है, जैसे कि आइस च्यू करना, ठीक है. लेकिन चॉकलेट या जंक फूड की क्रेविंग का मतलब यूजुअली मैग्नीशियम या किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होती. शॉर्ट में यही है बात कि भाई क्रेविंग्स अक्सर बॉडी के न्यूट्रिएंट डिमांड से ज्यादा ब्रेन के हैबिट और रिवॉर्ड सिग्नल का रिजल्ट होता है. तो इस चीज को समझिए और उसके हिसाब से जो है अपने क्रेविंग को कंट्रोल करने के मेजर्स लीजिए. फिलहाल यहाँ पे एक्शन जैक्सन मूवी का गाना सुनते हैं हिमेश की आवाज में. स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑल 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. जियो बिंदास.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabat Pro. Only for 360 riyal instead of 849 riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
1: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

निहाल और अनखोंस की आवाज में हमने सुना एक बहुत ही प्यारा गाना मातृभूमि मूवी का, तुम चांद देख लेना तुम्हें हम नजर आएंगे। बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं भाई। हाँ सही है, मगर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:48 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्यारी खबर जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक लोकल अपडेट हमारे हाथ में लगा है और ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखिए, हमें कुछ खबर मिली है कि कतर सेंट्रल बैंक ने एक अपडेट जारी किया है। कतर सेंट्रल बैंक ने 5 कतरियाल, 10 कतरियाल और 50 कतरियाल बैंक नोट्स के अपडेटेड वर्जन्स को जारी करने की घोषणा की है और ये अपडेट जो है कतर की 5th सीरीज करेंसी के फेस्ड रिविजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और नए नोट्स में जो बदलाव है वो क्या है? कतर का अपडेटेड ऑफिशियल स्टेट एम्बलम, अरबिक न्यूमरल्स में चेंजेस और नई इशू डेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि पुराने कतरियाल 5 कतरियाल 10 और 50 कतरियाल नोट्स अभी भी वैलिड हैं और लीगल टेंडर में रहेंगे। पुराने और नए दोनों वर्जन्स मार्केट में साथ साथ सर्कुलेट करेंगे। लोग और बिजनेसेस दोनों तरह के नोट्स को बिना किसी दिक्कत के ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और एक गाना प्ले करते हैं किंग की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 rials ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है, तो आप एलिजिबल हैं.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर
3: हाय एवरीवन इट्स मी डॉक्टर अफसल नसीम हेल्थकेयर पीपल आर ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट व्हेन द टूथ टू गेट फिल्ड एंड हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स दैट द टूथ नीड्स टू बी फिल्ड या इफ यू कैन मेक आउट ब्राउन डिस्कलरेशन और ब्लैक डिस्कलरेशन और अ चॉकी व्हाइट अपीयरेंस ऑन द सर्फेस ऑफ योर टीथ जस्ट इमीडिएटली कंसल्ट योर डेंटिस्ट एंड गेट द रिक्वायर्ड टूथ और टीथ टू गेट फिल्ड Filling simply means just removing the caries or damaged portion of the tooth and cleaning the area and restoring the tooth by replacing a material which is biocompatible with the tooth. If you people are capable of undergoing filling treatment in the earlier stage itself, you can just forget that your tooth is getting painful. Usually, all the caries or decay becomes painful in 3 months to 1 year itself. Once you start experiencing pain on your teeth, the treatment is also a bit costlier than doing normal filling. To lead a better dental health, do consult your dentist regularly once in 6 months. Wishing you all have a better health.
2: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: पुरंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:16 हो रहे हैं और यहां पे हम जरा बात करते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में, जो एक वन ऑफ टेस्ट मैच है जिसका डे 3 चल रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया ने 564 में जो है डिक्लेयर कर दिया था और अभी अफगानिस्तान की बैटिंग चल रही है, जहाँ पे 142 रन्स में 7 विकेट वो गिरा चुके हैं 422 रन्स के साथ, जो है ट्रेल कर रहे हैं। तो बहुत लंबा रास्ता है जाने के लिए और देखिए इट्स क्वाइट क्लियर कि अभी यहाँ से कौन जीत सकता है, बट जीतना जो है उसके चांसेस ज़्यादा है इंडिया के, और ड्रॉ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, वहाँ शायद एक मिरेकल जो है आ जाए अफगानिस्तान के साइड से, बट लेट्स सी क्या होता है। मगर यहाँ पे जो है ये बात बताते हुए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी ही देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो एक बहुत ही खास खबर लेकर आएंगे, उस खबर के लिए तैयार हो जाइए। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: का अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026। डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल। ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win
3: the big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

भाई ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक आई ओपनर भी है, क्योंकि जब इस गाने के बोल को हम ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। उसके साथ साथ हमें पता चल जाता है कि कितना ज्यादा जो है कैश का इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में बढ़ चुका है, बिना कैश के कुछ हो नहीं सकता, और कैश तुम्हारे पास कितना है उसके हिसाब से तुम्हारी वैल्यू जो है आजकल आकी जाती है। कैश नहीं तो भाई फिर कुछ नहीं, यही एक सिलसिला चल रहा है दुनिया का अभी। अब कैश के बारे में बात कर ही लिया तो हम जरा ये भी बात कर लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस को इस बार कितना कैश मिलने वाला है। जी हाँ, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को जो है $50 मिलियन मिलने वाले हैं, $50 मिलियन जो है, और ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड एक प्राइज मनी है, जहाँ पे टोटल $655 मिलियन जो है इसमें लगाए गए हैं, और रनर्स आपको $33 मिलियन मिलेंगे, थर्ड प्लेस वाले टीम को $29 मिलियन मिलेंगे, फोर्थ प्लेस में जो टीम है उसको $27 मिलियन जो है मिलेंगे, और क्वार्टर फाइनल में जो टीम होंगी उनको $19 मिलियन, राउंड ऑफ 16 में $15 मिलियन, राउंड ऑफ 32 में $11 मिलियन, और ग्रुप स्टेज में $9 मिलियन। मतलब भाई खर्चा ही खर्चा, मतलब सोच के देखिए इस पूरे टोटल फाइनेंशियल पैकेज जो इस टूर्नामेंट का, इट इज समवेयर अराउंड $871 मिलियन। और इसके वर्ल्ड कप के बारे में जिनको भी अगर स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं है, मैं बता दूं कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है होने वाला है June 11 से लेकर July 19 तक, और ये तीन कंट्रीज में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। और देखिए इतने बड़े लेवल पे जो है, इतने बड़े स्केल पे जो है वर्ल्ड कप होने वाला है, और कतर भी वहाँ पे है, कतर की टीम वहाँ पे है, उनका एक मैच जो है एक वार्म अप मैच एल साल्वाडोर के साथ जो हुआ था, जिसमें 0-0 स्कोर रहा, टाई रहा, और देखते हैं क्या होता है टूर्नामेंट में, किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है कतर के साइड से आता है, ये सब देखने के लिए हम भी काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और थोड़ा सा और अगर ग्लिम्स में देना चाहूँ, एक ग्लैंस देना चाहूँ इस वर्ल्ड कप के बारे में, तो 48 टीम्स हैं इन टोटल, 104 मैचेस है, 40 डेज तक का ये टूर्नामेंट चलेगा, 16 वेन्यूज हैं, और एक ग्लोबल शोपीस, यस दैट इज फीफा वर्ल्ड कप 2026 फॉर यू। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जावेद अली की आवाज में सुनते हैं एक दिन तेरी राह में। अब मेरा हो गया, जावेद भाई गाएंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, जियो बिंदास।

0: एवरीवन, मैं हूँ आरजे कशिश और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार। तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो?
1: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
2: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ।
0: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है।
3: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द, आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप। व्हाई? फर्स्ट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrients inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list and watch out. The label itself is very tricky. You read on it, sugar-free. Does it mean sugar-free 100%? No, it's not the case.
0: So what do you think about this activity?
3: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. Yeah. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
0: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं।
4: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
5: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 riyal instead of 849 riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
7: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
6: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
7: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
6: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
8: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
9: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
10: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
11: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
9: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
12: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.
13: Baat banao, kabhi kisi se na pyar karna.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के बारे में, जहाँ पे अब जो अपडेट्स आए हैं हमारे पास उसके हिसाब से देखें तो स्कोर जो है 152 पे ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद फिर से जो है नया स्टार्ट हुआ है, सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ है, चार रन जो है अभी स्कोर किए उन्होंने, 1.2 ओवर्स हो चुके हैं और अभी 408 रन से जो है अफगानिस्तान ट्रेल कर रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से वो लोग परफॉर्म करते हैं। अगर हम इस पूरे टेस्ट के स्टैट्स के बारे में देखें तो इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही अच्छा एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस इंडिया के साइड से जो है देखने को मिला है। शुभमन गिल जो कप्तान है, कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 177 बॉल्स में 126 रन स्कोर किए हैं। केएल राहुल ने 100 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी काफ़ी अच्छा जो है एक बैटिंग डेमोन्स्ट्रेशन जो है दिखाया है, क्योंकि 68 बॉल्स में 52 रन उन्होंने दिए हैं। अगर हम टेल एंड की बात करें तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया यार। इवन मानव सुतर ने भी 28 रन बनाए हैं, 22 रन मोहम्मद सिराज ने भी दिए हैं, कुलदीप यादव ने 9 रन दिए हैं। बट देखा जाए तो बैट्समैन लोगों ने भी थोड़ा, मतलब बॉलर लोगों ने भी थोड़ा अच्छा बैटिंग किया है, डिसेंट बैटिंग किया है, नॉट बैड। और उसके हिसाब से एक और चीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, वो ये है कि अफगानिस्तान के इनिंग्स की अगर हम बात करें तो रहमत शाह के अलावा किसी का भी एक हाई स्कोर गया नहीं है और उनका भी 60 रन का है। 135 बॉल्स में उन्होंने 60 रन स्कोर किए हैं। उसके बाद हशमतुल्ला शाहिदी ने 20 रन स्कोर किए हैं, बाकी सब जो है थोड़ा नीचे है, 17 रन आए हैं। सादिकुल्ला अतल के बैट से, अब्दुल मलिक के बैट से 16 रन आए हैं। तो एक बहुत बड़ा बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक तो आया नहीं है, बट देखते हैं इस इनिंग्स में किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से वो इंडियन बॉलर्स पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। और यही बात बताते हुए, यही अपडेट देते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:08 हो रहे हैं और यहां पे जो है एक छोटा सा ट्रिविया हम लेकर आए हैं, जिसको एक सवाल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। पहले तो सवाल पूछेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने भी कंट्रीज ने वर्ल्ड कप जीता है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा एक्टिव ड्रॉट रहा है? ठीक है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ऑलरेडी, बट बहुत सालों से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता नहीं है, तो सबसे लंबा स्ट्रेच ऐसी कौन सी वर्ल्ड कप विनिंग कंट्री का है जिनका बहुत साल से वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल हो चुका है या फिर नामुमकिन हो चुका है, जो बहुत सालों से जीते नहीं है। अभी जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर ब्राजील ने जो है लास्ट में जीता था 2002 में, और 2002 से 2026 के बीच में 24 साल हो गए, ठीक है, तो वैसे ही ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका वर्ल्ड कप विदाउट अ वर्ल्ड कप कितना टाइम हो चुका है, सबसे ज्यादा टाइम कौन सी कंट्री का हुआ है, ये आपको बताना है। और मैं एक क्लू आपको दे देता हूँ, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। अब बताइए, और खासियत ये भी है कि इस कंट्री का फीफा वर्ल्ड कप के साथ बहुत बड़ा नाम भी है, वो भी क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और धुरंधर मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले करते हैं। मेरा बहुत फेवरेट गाना है, इस गाने को एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब मेरे पास आया है। मुझे मैसेज किया है रोहित भाई ने, और उन्होंने बोला है उरुग्वे, जो बिल्कुल सही जवाब है। 1950 में आखिरी बार उरुग्वे ने जो है अपना वर्ल्ड कप जीता था। अब जो है 76 ईयर्स हो चुके हैं, जी हाँ 76 ईयर्स, अब तब से उन्होंने एक वर्ल्ड कप नहीं जीता है। और इसकी खास बात यह है कि सबसे पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो उरुग्वे ने ही जीता था, वो उरुग्वे में ही हुआ था। तो ऐसा एक रिश्ता भी है उरुग्वे का वर्ल्ड कप के साथ, मगर पहला वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है वो फिर से उस मैजिक को रिक्रिएट नहीं कर पाए, और मतलब 1950 के वर्ल्ड कप के बाद वो उस मैजिक को रिक्रिएट नहीं कर पाए। और 1950 के वर्ल्ड कप का एक और बहुत बड़ा एक चीज़ मैं बताता हूँ, इनका मैच हुआ था, उरुग्वे का एक मैच हुआ था ब्राज़ील के साथ, और उस टाइम पे मैराकाना स्टेडियम में मैच हुआ था, बहुत ही बड़ा मैच था ये। और इस मैच में जो है उरुग्वे ने जिस तरीके से ब्राज़ील को हराया, जिस तरीके से लीड लिया अपना, पूरा मैराकाना स्टेडियम जो है शांत हो गया था, चुप सा हो गया था, मगर बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग मैच था ब्राज़ील के लिए वो, और ब्राज़ील फुटबॉल फैंस के लिए सही में दिल तोड़ देने वाला एक नज़ारा था वो भी, जिसका बदला उन्होंने 1958 में वर्ल्ड कप उठा के लिया। बट या अभी फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में आएंगे वापस कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात्रों के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है, ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में 9:33 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए एक थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। और आज हम टेक जोन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि कितना कुछ मतलब गेमिंग का एक वो चल रहा है, वर्चस्व चल रहा है आजकल बच्चों के बीच में। गेमिंग कितना घुस चुका है बच्चों के दिल में। इवन मैं भी बहुत ही ज़्यादा गेम खेलना पसंद करता हूँ। तो ये बात जब मैं बोलूँगा तो जो भी लोग गेम खेलते थे या फिर गेमिंग कंसोल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत बहुत ही बढ़िया एक बात लगेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है एक्सबॉक्स सीरीज X25 का लिमिटेड एडिशन, जो नवंबर से अवेलेबल होगा। ठीक है, X25 जो है 25 इयर्स ऑफ एक्सबॉक्स का एक स्पेशल एडिशन होने वाला है और इसमें एक ट्रांसलूसेंट ग्रीन बॉडी होगी, कंसोल के लिए भी कंट्रोलर के लिए भी। उसके अंदर के जो चिप वर्किंग्स हैं उन सबको दिखाने जैसा एक उसका वो होगा, डिजाइन होगा। उसके साथ साथ एक एक्सबॉक्स 25 का एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग भी है जो कंसोल और कंट्रोलर में दोनों में होगा। और सोच के देखिए, जो एक्सबॉक्स के फैन बॉयज रहे हैं उनके लिए सही में ये बहुत ही एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। जो गेमिंग के फैन बॉयज रहे हैं, गेमिंग कंसोल के फैन बॉयज रहे हैं, जो चाहते हैं कि हाँ यार ये एक लिमिटेड एडिशन सीरीज है, अगर हम इस पर अपना हाथ लगा पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन है इसका, एक टेक गीक काइंड ऑफ एक डिज़ाइन भी है। फिलहाल यही बात बताते हुए हम एक काम करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, दिल कबड्डी मूवी का गाना सुनते हैं सचिन गुप्ता और जसप्रीत की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव.
1: जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

तो भाई यही बोलते हुए टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे कशिश पहुंच जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें सुनाने के लिए, साथ ही साथ पलट के देखने के लिए आपको मजबूर कर देगी। ऐसी ऐसी बातें वो आपसे करेगी कि आपको पलट के देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं देखोगे तो भाई आपका लॉस है। तो यही बात करते हुए हम भी जरा निकलते हैं, टेक केयर। और हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और मैं था आपका मेजबान सदीप। जियो बिंदास।

0: CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: This hour is brought to you by
5: Homes Are Us. We complete your home.

0: सुखविंदर जी ने इतनी बार करिए ना करिए ना करिए ना ये कह दिया कि मैंने जो है मतलब ऐसे करिए ना के चक्कर में कुछ ना कुछ फालतू ऑर्डर कर दिया। ताल मूवी का ये ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे 106.3 रेडियो ऑलिव पर और मैं हूँ आपकी कशिश। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? लाइफ मस्त है शो आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ। एंड करिए ना करिए ना करिए ना इतनी बार इन्होंने बोला कि मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया। एंड मुझे ना अभी तक लगता था कि अडल्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि पैसे कमाने हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्ट करना है या फॉरेन ट्रिप पे जाना है, सेविंग करनी है बेसिकली। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अडल्टिंग का सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा इशू ये है कि खाना क्या है, खाने में क्या बनाना है, सब्जी कौन सी ले लें, ऑर्डर क्या करें, नाश्ते में ये खाया था तो लंच में ये खाएंगे, अब थोड़ा लाइट खाना चाहिए, अब थोड़ा हैवी खाना चाहिए, ऐसा क्या ऑर्डर करूं या ऐसा क्या जो है मैं कैसे ऑर्डर कर दूं कि डिलीवरी चार्जेस जो है वो ना लगे, ये सब सोचने में मेरी आधी एनर्जी चली जाती है। अब मैं क्या बोलूँ इसमें। वैसे लाइफ मस्त में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है आज हम करने वाले हैं रोज की तरह, तो बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। 3311063 ये जो है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर जल्दी से आकर जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिए, दिन का जो है क्या हाल चल रहा है, गर्मी कैसी लग रही है, ये सब मुझे बता दीजिए। साथ ही में एक बहुत ही स्पेशल चीज जो है वो हम कल से कर रहे हैं, कल से इस पर बात कर रहे हैं और वो है पलट मेरे यार।
1: पलट मेरे यार।
0: कल क्या कुछ खास बातें हमने पलट मेरे यार पे की वो जो है आप सुन ही रहे हैं दिन भर, लेकिन आज क्या कुछ खास होने वाला ये भी बताऊंगी थोड़ी सी देर में। थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा यू नो पेशेंस रखो, बताऊंगी। तब तक एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए। अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक है, आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: trek. Brought to you by Nanad Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:13।
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, लव यापा को तो नहीं पता लेकिन जेंजी यापा जरूर हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड लव यापा ये जो मूवी थी ना, इसमें दो लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया था। पहला आमिर खान साहब के जो बेटे हैं जिन्होंने लीड रोल निभाया है इस मूवी में, महाराज मूवी के बाद मुझे ऐसा लगा था कि जुनैद जो है वो कमाल कर देंगे, मतलब इतना अच्छी एक्टिंग करेंगे कि जानवी की जो बहन है खुशी उन्हें कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन देखिए, अगर मुझे आपको इनके बहन के नाम से या फिर इनके फादर के नाम से इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा काम किया होगा, लोगों ने इन्हें कितना रिकग्नाइज किया होगा। सो इन्होंने तो ऑब्वियसली हमें डिसअपॉइंट किया। लेकिन जो दूसरे इंसान की मैं बात कर रही हूँ वो खुशी कपूर तो बिल्कुल नहीं थी, उनसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी ना। खैर, दूसरा इंसान जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया था वो था कुल्लू, आदित्य कुलश्रेष्ठ, जो एक स्टैंड अप कॉमिक है, जो एक राइटर है। अगर आपने फर्जी मुशायरा जाकिर खान का सुना है, सो उसके राइटर हैं कुल्लू, उनको माइक नेम उनका कुल्लू है। एंड काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस पे भी हमने उन्हें देखा हुआ है। एंड मैं उनसे डिसअपॉइंटेड पर्सनली इसलिए थी क्योंकि वो भोपाल से हैं, एंड कोई भोपाल का इंसान इतना एवरेज एक्ट तो कर ही नहीं सकता। हमारे तो रग रग में ओवर एक्टिंग है। आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपको समझ ही आ रहा होगा कितनी ओवर एक्टिंग जो है वो हमें कूट कूट के भरी हुई है। खैर, ओवर एक्टिंग करते हुए, ओवर रिएक्ट करते हुए जरा इस ओवर एक्टिंग वाले जो मौसम है उसकी बात कर लेते हैं। सो बहुत ओवर ओवर ओवर बहुत बार बोल दिया मैंने, खैर अब पर ओवर वाले जो टेम्परेचर है उसकी बात कर लेते हैं। 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का करंट टेम्परेचर है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, कई लोगों का मेरे पास कल मैसेज आया था कि नहीं कशिश अभी तो 39 हो रहा है हमारे यहाँ। देखिए, मेरा फ़ोन मुझे मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर बता रहा है, हमारे इस जगह का आसपास का टेम्परेचर बता रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो, सो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर कुछ अलग हो रहा है सो मुझे 3311063 पर मैसेज करके बता दीजिए। खैर, थोड़ा क्यों बोला मैंने खैर थोड़ी ठंडक आपके दिल को पहुंचाने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: So, अपने दोस्तों को याद करते हुए अपने इस दोस्त के साथ केके की आवाज में ये ट्रैक आप एंजॉय कीजिए। ये गाना जब भी मैं याद करती हूँ ना, सुनती हूँ, तो मुझे मेरे दोस्तों की याद आ जाती है। फिर मुझे याद आता है कि यार अभी करेंटली ऐसे कोई दोस्त है ही नहीं मेरे पास। गाना एंजॉय करो, कहते रहो जी उपेंद्र दास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, to your bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.

कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जरूर हो गया है। क्या हुआ है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कल हो रहा हूँ मूवी के। इस गाने के बाद बारी आ गई है हमारी बातचीत की। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए लाइव मस्त शो लेकर आ गई हूँ। एंड जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह ही रही थी कि मैं जब आपको टेम्परेचर बताती हूँ, अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग टेम्परेचर जो है वो होता है, फर्क होता है कई बार टेम्परेचर का। सो अभी मुझे जो है एक मैसेज आया, एक फोटो खींच के उन्होंने भेजी है कि हमारे यहाँ तो 43 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यार इसमें भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। मतलब अगर मैं अपनी मम्मी को इंडिया में कॉल करती हूँ और उनको बताती हूँ ना कि यार मम्मी अभी यहाँ पे तो ना 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो मम्मी उधर से बोलती है हमारे यहाँ 45 हो रहा है, हमारे यहाँ 43 हो रहा है। और अभी मतलब पहले इसमें कंपटीशन कर रहे थे, और अब जब मैं बताती हूँ कि मम्मी बहुत गर्मी है, 43 डिग्री सेल्सियस है, तो मम्मी बोलती है हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो मानसून आ गया है। मतलब विन विन सिचुएशन हमेशा मम्मी के पास ही कैसे होती है मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर विन विन सिचुएशन तो इस वक्त जून में है हम बॉलीवुड के जो फैन है उनके पास, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग मूवीज जो है उनका लाइनअप है, यानी एक के बाद एक अमेजिंग मूवीज जो है वो लॉन्च होने वाली है, रिलीज होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो 12th जून को जो है मोस्ट अवेटेड मूवी, मतलब मैं तो इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मैं वापस आऊंगा, जो मूवी है दिलजीत दुसांझ की, शिवानी की और वेदांग रैना की, इम्तियाज अली का डायरेक्शन है, वो मूवी रिलीज हो रही है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कॉकटेल 2 भी आने वाली है। एंड उसके बाद वेलकम टू द जंगल, उसका भी इंतजार, मुझे नहीं पता वेलकम टू द जंगल का सच में लोगों को इंतजार है या नहीं है, लेकिन इन दोनों मूवी का यानी कॉकटेल 2 का और मैं वापस आऊंगा का तो सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप कौन सी मूवी का वेट कर रहे हैं बताइए मुझे 3311063 पर। ये गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Radio Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।
0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: है पूरी एट पलट मेरे यार विद आरजे कशिश सुबह 10 से 1 ओनली ऑन वीडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास।

डिंपल कपाड़िया जी के हैप्पी वाले बर्थडे पर. ये वो गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट है. बीइंग अ जेन ज़ी, अगर ये गाना मेरा फेवरेट है तो सोचो क्या वाइब है इस गाने में. 69 ईयर्स के हो गए हैं वो एंड स्टिल इतने खूबसूरत, इतने आइकॉनिक. सो एक बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे तो बनता है उनके लिए. वेलकम बैक जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश. एंड यार ये जो गाना है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे दादू, मेरे पापा और मैं इस गाने पे साथ में वाइब करते हैं. एंड मेरी मॉम, दादी और मैं इस बात पे वाइब करते हैं कि यार डिम्पल कपाड़ियों के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं. एंड आज भी अगर हम उनकी फोटोज़ देखें, उनकी वीडियोज़ देखें, उनके अगर नई मूवीज़ की मैं बात करूँ तो उसमें उनके बाल, ओ माई गॉड, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगते हैं. बस ऊपर वाले से एक ही दुआ है, ऐसे बाल दे दो मुझे, फिर मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगी. खैर, कंप्लेन तो हम अक्सर ये भी करते हैं कि यार मंथ शुरू हुआ है, सैलरी अभी अभी आई है और पैसे खत्म हो गए. मंथ एंड पे भी यही रोते हैं और मंथ की शुरुआत में भी इसी बात पे रोते रहते हैं. तो अनुपम मित्तल ने जो है इस प्रॉब्लम का एक सलूशन दिया है और इसके बाद इंटरनेट ने उन्हें घेर लिया है. सो अनुपम मित्तल जो शार्क टैंक इंडिया में एक शार्क भी थे और जिनके काफी सारे मैच मेकिंग एप्स भी हैं, सो उन्होंने ये कहा है कि आपको जो है एक ऐसा रिजीम फॉलो करना चाहिए जिसमें कंपनीज दो बार सैलरी दें. मतलब एक सैलरी को स्प्लिट करके पहली सैलरी जो है वो 15th ऑफ द मंथ को मिले एंड सेकेंड सैलरी 30th ऑफ द मंथ को मिले, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो और मनी फ्लो जो है वो मेंटेन रहे कंपनी के पास भी और एम्प्लॉय के पास भी. आपको क्या लगता है, क्या ये तरीका सही है, क्या ऐसे दो बार सैलरी मिलनी चाहिए? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर अगर आप बता सकते हैं 3311063. का ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास.

0: बहुत गलत बात है, मतलब बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इतने प्यार से मुस्कुराना, वो भी 51 की एज में, कि मतलब मुझ जैसी 22-23 साल की जो लड़की है वो फेल हो जाए, गलत बात तो है। देखो शिल्पा शेट्टी जी, आप अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। इतना योगा कर लिया है, इतना परफेक्ट बना लिया है खुद को, कि अब हम सबको कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। केयर कॉम्प्लेक्स को साइड में रखकर आप सबको वेलकम करते हैं 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए लाइफ मस्त है शो लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त तो देखिए शिल्पा शेट्टी जी की चल रही है, आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड देखिए सिर्फ ये एक कोई भी नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिसके बारे में हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है वो सोचती भी नहीं है। इनके पास ना कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है, और इनकी जो पहली मूवी है हम सब जानते हैं बाजीगर, शाहरुख खान के साथ इन्होंने डेब्यू किया था। उस मूवी के साथ साथ इन्होंने सेम ईयर में यानी 1993 में तेलुगु मूवी है उसमें भी डेब्यू किया था, यानी एक ही साल में दो इंडस्ट्री में इन्होंने डेब्यू किया था। एंड अगर एक और पाथ ब्रेकिंग चीज जो इन्होंने किया है वो मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने ना अपना एक ऐप और अपनी एक बुक जो है वो लॉन्च करी है, जो किसी भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस ने किया नहीं है। सो बस आज इनको हैप्पी वाला बर्थडे विश करते हैं एंड इनके अमेजिंग वाले गाने जो है एंजॉय करते हैं रेडियो वाले पर।
1: बाजीगर की प्रिया से लेकर धड़कन की अंजलि के रोल में फिट होने की बात हो या योगा करके फिट होने की, शिल्पा शेट्टी ने सब कर दिखाया है। रेडियो ऑलिव विश करता है सुपर से ऊपर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हैप्पी बर्थडे। आज पूरे दिन सुने इनके गाने हर घंटे।
0: बाजीगर मूवी से किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, शिल्पा शेट्टी का डेब्यू सॉन्ग।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:16 यानी 11:16 मिनट।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

यार ये गाना कितना पुराना है ना, मतलब सुनिधि चौहान तब भी उतना ही रॉकिंग गाया करती थी। अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल पर, और मैं हूँ आपकी कशिश। लाइव मस्त शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सुनिधि चौहान को जो है जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बस हमारी जो छोरियां हैं वो छोरों से बिल्कुल कम नहीं है। मैंने लाइव कॉन्सर्ट भी सुनिधि चौहान का अटेंड किया है एंड व्हाट अ वाइब, व्हाट अ वाइब, बिना रुके लाइव गाना डांस करना। टेलर स्विफ्ट के पीछे लोग जो है वो पागल होते हैं, लेकिन सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में आप एक बार जाओ मजा ही आ जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए, लड़कियों को कम ना समझते हुए, अब हम क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि एज अ सर्टिफाइड क्रिकेट पगलू मुझे जो है क्रिकेट का काफी शौक है। एंड वुमेन्स क्रिकेट की अगर हम बात करें तो टीम अभी जो है इंग्लैंड के खिलाफ हाई वोल्टेज T20 जो है वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड BCCI ने हाल ही में एक बड़ा टूर जो है उसके लिए स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया, जिसमें कुछ पुराने चैंपियंस जो है वो वापस आ रहे हैं एंड कुछ नए प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को मौका भी दिया गया है। तो इस इंग्लैंड के टूर में जो है हरमनप्रीत जो है वो टीम को लीड करेंगे एंड स्मृति मंदाना जो है वो वाइस कैप्टन रहने वाली है। एंड बहुत ही एक्सप्लोसिव सी ये जो टीम है ये बनाई है। अब कल का मैच जो है वो शेड्यूल है, सो अब देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। 9 जून यानी कल हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारी टीम ने खेला है, सब कुछ मैं बताऊंगी। यार आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप तो अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करते रहो। तेरी ओर गाने का नाम है, सिंग इज किंग मूवी का ये ट्रैक है एंड इस मूवी के कैटरीना के जो लुक्स हैं वो इतने वायरल हो रहे हैं इस वक्त इंटरनेट पे कि ओ माय गॉड, साड़ी से लेकर वो एक पिंक बूट्स वाला लुक है, लोग सच में उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा या नहीं देखा बताओ और गाना एंजॉय करो, कहो जियो बिंदास।

0: Radio Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।
0: Radio Olive, your happiness frequency.

0: प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे पलटना क्यों है जरूरी, इस पे बात करेंगे पूरी एट पलट मेरे यार विद आरजे कशिश सुबह 10 से 1 ओनली ऑन वीडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास। पलट मेरे
1: यार, फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी, नो नॉइस नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, prawns crafted with patience, serve with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज

बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन पापा ये भी कहते हैं कि बड़ा नाम करेगी बेटी, हमारा ऐसा काम करेगी और इतना बड़ा नाम करेगी कि हमारा बेटा जो है वो जो भी काम करेगा वो छोटा ही लगेगा। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एंड अब क्या होता है ना कि क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ एंड मुझसे छोटा एक भाई है, तो वो जो भी काम करता है वो हमेशा मुझसे कंपेयर हो ही जाता है कि कशिश ने तो ये किया था, कशिश तो ऐसा करती थी, कशिश ने तो ये करके दिखा दिया था। बेचारे उस पर जो है थोड़ा सा प्रेशर तो बन गया था कि कशिश करती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी करूँगा। सो जितने भी छोटे भाई बहन है, आई एम सॉरी, हम बड़े भाई बहनों के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहना पड़ जाता है। कोई बात नहीं यार, आपके लिए भी अप्रिसिएशन जो है वो मेरे दिल से बाहर निकलता है, तो आपको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। और आपकी नज़र, आपके नाम जो है, एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि आप जो है वो रॉक स्टार हो और आपकी लाइफ जो है वो एकदम ब्लॉक बस्टर है, इसीलिए हमारे अगले गाने का नाम भी ब्लॉक बस्टर ही है। ये गाना एंजॉय करो, कोक स्टूडियो का ये गाना है। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में पलट मेरे यार के साथ। तो स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

0: एक अलग रेज, एक अलग टाइप का गुस्सा इस गाने में साउंड करता है, वो पैशन जो है वो सुनाई देता है। मेट्रो इन दिनों मूवी से राघव चैतन्य की आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपने एंजॉय किया। 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। एंड इस वक्त हम बात कर रहे हैं पलट मेरे यार की।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: अब देखिए पलट मेरे यार पे कल हमने बात की थी कि खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको आप पलट के अक्सर नहीं देखते हो, और फिर उससे क्या क्या जो है नुकसान आपको होता है, एंड ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खाने पीने की चीजों के पैकेट के पीछे देखनी चाहिए, पलट के देखनी चाहिए। सो रेडियो ऑलिव का और मेरा एक इनिशिएटिव है जहां पर हम आपको कह रहे हैं कि यार जरा मेरे यार पलट के देखो कि आखिर आपके ये जो प्रोडक्ट्स है जो आप यूज कर रहे हो उनके पीछे कॉन्टेंट में आखिर क्या कुछ लिखा है। सो थोड़ी रिसर्च मैंने की तो मैंने ये ध्यान दिया कि सिर्फ खाने पीने की चीजों के साथ ऐसा नहीं है। हम चाहे हमारे डेली यूज का कोई भी सामान हो, अगर उसे पीछे पलट के नहीं देखते हैं, उसके पीछे का कंटेंट नहीं चेक करते हैं, तो हमें काफी सारे नुकसान जो है वो होते हैं। अगर मैं बात करूं रूम फ्रेशनर्स की, सो रूम फ्रेशनर्स को अगर आप पलट के देखोगे, उसके पीछे का कंटेंट एक बार पढ़ के देखोगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि उसमें इतने सारे हार्मफुल चीजें हैं जो आपके बॉडी की काफी यू नो वर्किंग को इम्बैलेंस कर सकते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस तक हो सकता है हमारे रूम फ्रेशनर से। तो बस उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारे कटघरे में जो है हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि रिसर्च में मुझे ये पता चला है कि 2 गुना ज्यादा केमिकल्स जो हैं पिछले 10 सालों में हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में अब लोग डालने लग गए हैं, कंपनीज डालने लग गई हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो 3 में से 1 स्किन केयर प्रोडक्ट में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो वो पैकेज पे जो है बहुत छोटा छोटा लिस्ट करते हैं या लिस्ट भी नहीं करते। बस इसी में डिटेल पर बात करेंगे हमारे शो पर लाइफ मस्त है पर एंड पलट मेरे यार पर।
1: पलट मेरे यार,
0: हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जो है डर्मेटोलॉजिस्ट वो भी होंगी जो आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगी कि यार जब अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो स्टे ट्यून्ड रहिए पलट मेरे यार पे एंड 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप ऑडियो नोट भेजिए मुझे कि आप पलट के फ्लिप करके प्रोडक्ट्स को देखते हैं यानी देखते हैं और उसके पीछे का कंटेंट जो है वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, जल्दी जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए, ऑडियो नोट भेज दीजिए। तब तक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। बादशाह का सिंगल है ये, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास। आपके मैसेजेस का ऑडियो नोट्स का भी सब्री से इंतजार कर रही हूँ मैं।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:12.
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस. कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM. एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM. ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स. सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड. कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो

0: एग्जैक्टली, तू है तो मैं हूँ, यानी अकल है तो आपकी हेल्थ है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और लाइफ मस्त है शो में हम ले आए हैं आपके लिए
1: पलट मेरे यार।
0: हाँ जी, तो मेरे यार पलटने को तैयार हो या नहीं हो, क्योंकि कल से जो है मैं आपसे बस इतनी सी इल्तिजा कर रही हूँ कि जरा पलट के देखो, मतलब अपने पीछे पलट के देखने की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट हो, चाहे आपके किसी घर पे यूज आने वाला कोई सामान हो, उसे पलट के देखो, एक बार कॉन्टेंट पढ़ के देखो कि यार आखिर इसमें है क्या क्या, और कहीं ये जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ये मेरे लिए रिस्की तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है। आप देखो, जैसे मैं ये आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि कल जो है मैं जब ऑफिस से गई तो मैं शार ले रही थी, एंड तब मैं एक बहुत बड़ी बॉटल बाथरूम में रखी हुई थी, शार जेल मैं लेकर आई हूँ, एंड उस पे जो है नेचुरल गोट मिल्क से बना हुआ लिखा हुआ है, एंड वो डीटैन भी करता है एंड उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। सो मैं जब गई थी लेने के लिए एक शार जेल, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे, लेकिन इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड उस पर ऑर्गेनिक सा, यू नो, एक बहुत अर्दी सा टोन है और ऑर्गेनिक उस पर डिजाइंस बनी हुई है, जिससे आपको फीलिंग आती है कि हाँ ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगा। एक गोट की फोटो बनी हुई है, गोट मिल्क से बना हुआ वो है। सो ऐसा फ्रंट पे लिखा हुआ था, तो मैंने बिना कॉन्टेंट देखे उसे परचेज कर लिया था, उसे खरीद लिया था, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे भी था। लेकिन कल जब नहा रही थी, और क्योंकि पलट मेरे यार पे मैं आपसे डेली बातें अब ये कर रही हूं कि यार पलट के देखो पलट के देखो, तो मैंने उस प्रोडक्ट को पलट के देखा, एंड तब मुझे पता चला कि उसमें इतने पैराबेंस हैं, इतने सारे केमिकल्स हैं, कि अगर मैंने उसे अपनी स्किन पे डेली यूज किया तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होने वाली है। तभी मैंने सोचा कि यार आज तो आऊंगी और आप लोगों से बात करूंगी कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स और जितने भी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनमें भी पीछे ऐसे कुछ हिडन चीजें होती हैं जिन्हें हमें पलट के देखना होता है। तो बस इसी पर बात करने के लिए मैं हमारी एक्सपर्ट को ले आई हूँ। हाँ जी, एस्टर डीएम हेल्थ केयर से हमारे साथ डॉक्टर अनिला हैं, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सो वेलकम डॉक्टर अनिला, कैसे हो आप एंड कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू।
3: सो एज अ डर्मेट, डू यू रिकमेंड पीपल टू लुक एट द कंटेंट्स लाइक ऑन डेली बेसिस?
2: ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी हैज टू लुक at the contents, which is written very clearly at the back, but it always be in small letters, so you have to be very careful before you buy a product.
3: Okay, do you look back of the products? Okay. What you buy?
2: Always.
3: Always?
2: Always.
3: Okay, not only about skincare products, about food also.
2: Most of the products we look.
3: Okay.
0: तो देखिए ये तो देखते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हमें अक्सर पलट के देखने चाहिए, उन पर बात करेंगे हम लेकिन थोड़ी सी देर में। आप स्टे ट्यून्ड रहो 106.3 रेडियो ऑल पर, दिस इज पलट मेरे यार।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार,
0: कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर।
4: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
5: सर क्या पर ये बात है,
0: मूवी का नाम याद, सिंगर का नाम सोनू निगम, गाने का नाम है जीना है तेरे लिए। एंजॉय करो ये गाना, थोड़ी सी देर में डॉक्टर अनिला के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास

टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप न

0: गाने का नाम खोलो खोलो, मूवी का नाम तारे जमीन पर। अब देखिए तारे जमीन पे ईशान अवस्थी को जो प्रॉब्लम थी ना, बिल्कुल उसी तरह हम भी हैरान परेशान हो जाते हैं जब हमारे हाथ में आता है कोई प्रोडक्ट और हमें उसे फ्लिप करके देखना होता है। बिल्कुल जिस तरीके से ईशान अवस्थी को अल्फाबेट्स उड़ते हुए दिखने लग जाते थे ना, कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लग जाते थे, बिल्कुल उसी तरह है, हमें भी यही सब दिखने लग जाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: क्या मेरे यार, प्रोडक्ट्स को पलट के तो आप देख रहे हो, लेकिन ध्यान से देखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि हाँ हाँ कशिश, हम तो पलट के देखते हैं। लेकिन क्या पलट के देखते हो? पलट के प्राइस देखते हो? पलट के बस मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते होगे? लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखनी बहुत जरूरी है, और यही बताने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिला जो है वो इस वक्त हमारे साथ है। एंड क्योंकि कई बार ना हमें समझ नहीं आता कि कौन से ये केमिकल्स हैं जिनका नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सो बस आइए अब इनसे आगे की बातचीत जो है वो जारी रखते हैं।
2: So what are the key red flags that we should look for when we are buying skincare products or any cosmetic products?
3: So first of it is the harsh soaps or strong soaps, which is normally written as sulfates, sodium lauryl sulfates. Okay, so this is the content which gives you that bubbly lather when you use it on your skin. But it can be extremely harsh.
2: Or what are the names of these content written in the bag?
3: It is mainly written as sulfate or sodium lauryl sulfate.
2: Okay.
3: And the second one is mostly preservatives. So you should always look for the letter MI, okay, which stands for methyl isothiazolidinone.
2: Okay.
3: It can sometimes result in severe allergic reaction.
2: Okay.
3: So that the Medical Society has literally named it as allergen of the year in 2013.
2: Ooh, okay.
3: And third one, we all fond of good smell scents, yeah, always, right? So we should always look for the content perfumes or fragrance, because it can hide actually many different distinct chemicals, and it can cause some serious reaction, or it can range from mild to moderate to even serious reaction. So always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
0: बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कई बार सुना है कि जितने स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनमें खुशबू आ रही है तो यानी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिला है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है।
1: पलट मेरे यार,
0: तो मेरे यार पलट और पलट के क्या क्या देखना है ये हम थोड़ी सी देर में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करके आओ, पटियाला हाउस का गाना लॉन्ग द लश्कारा, एंजॉय करो जी। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में जियो।

0: exciting cultural milestone is happening in Doha. To commemorate Swedish National Day, the Swedish Embassy and Swedish Association Qatar is hosting a special celebration at IKEA Qatar. As a symbol of Sweden, IKEA represents the very best of its homeland, bringing Swedish heritage, sustainable design and the famous spirit of togetherness to life all over the world. This official gathering brings together dignitaries and partners to honor the strong bonds of friendship between Sweden and Qatar, marking a day of shared culture and pride. Official radio partner, Radio Olive.
1: Radio Olive Pay. Radio Olive Pay. Story of the day.
2: Story of the day.
3: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता. ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है. फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है. इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है. द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन. हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे.

0: है जरूरी, इस पे बात करेंगे पूरी। एट पलट मेरे यार विद आरजे कशिश सुबह 10 से 1 ओनली ऑन वीडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनोम रान। सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम रान। वन फैमिली वन मिशन।

0: ये गाना चल रहा है, ये ट्यून चल रही है और आप अपनी कुर्सी से उठ के मतलब डांस करना शुरू नहीं किया आपने, तो आप बॉलीवुड फैन तो नहीं हो यार। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए लाइफ मस्त है शो में लेकर आ गई हूँ
1: पलट मेरे यार।
0: हाँ जी, पलट मेरे यार पे, जहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि जरा अपने प्रोडक्ट्स को जो आप खरीद रहे हैं उन्हें खरीदने से पहले पलट के देखिए कि उसके पीछे क्या कुछ खास इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंटरनेट के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स के नाम जो है वो मैंने याद करने शुरू कर दिए, पेप्टाइड, नाइसिनामाइड और एक तो है जो आप जानते हो कि मुझे बोलना है लेकिन मुझे बोलना आ नहीं पाएगा इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। एंड बस अब देखिए, जब भी मैं ये सब देखने के लिए किसी पैकेट को पलट के देखती हूँ तो वहाँ पे इतने सारे केमिकल्स के नाम होते हैं कि समझ ही नहीं आता है। तो बस इसी को और ज़्यादा सिंपल करने के लिए कि क्या कुछ ध्यान में रखना है आपको जब भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेते हैं, बस इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिला इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। सो डॉक्टर साहब, अगले सवाल आ रहे हैं आपकी तरफ।
2: ओके, समटाइम्स वी यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक एलोवेरा जेल और राइस वाटर but it's packaged and so aloe vera gel gets spoiled in like 1 hour, 2 hour when you scrape it out from the leaf but how can it survive without preservatives in a tube or a bottle? Is it not risky to use those products?
3: See, actually don't be fooled by the term it is fully natural or fully organic.
2: Yeah,
3: okay, because there are a lot of preservatives or fragrance which is added to increase the shelf life of the product. Always natural doesn't mean that it is 100% is safe to use. You have to be careful when you choose a product.
2: So, jate jate, what one message you want to give to our listeners about Palat Mere Yaar?
3: This is actually a very good activity because most of the people, they just look at the front page or the friend of the bottle. The biggest piece of advice for me to my patients is the front of the box is always advertising and the back of the box is the reality. So you will always have to check what is the ingredients which is written in the back of the box. And according to the law, the concentrations are listed from top to bottom. So if you are looking for a specific ingredient and which is listed in the bottom of the pack, that means you are actually paying a premium for a very basic product.
2: Yeah,
0: exactly. यही बात तो मैं आपको कब से समझा रही हूँ और कह रही हूँ।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: So मेरे यार, पलट के जाने का वक्त आ गया है। अब मुलाकात होगी कल पलट मेरे यार के day 3 में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। So stay tuned रहेगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आप पलट कर देखते हैं या नहीं देखते हैं और हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा जरूर बताइएगा 3311063 पर।
4: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर
1: ये गाना,
0: तब तक ये फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर व्या करवा दो जी आर आपके रेडियो सेट्स पर। मुझ जैसे कई लोग अब यही कह रहे हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट होना नहीं हो पा रहा है, व्या करवा दो, मेरा दोपहर में सोने का मन कर रहा है, अब मेरा होम मेकर बनने का मन कर रहा है मेरा, जो कि काफी टफ है आई नो, वो करके भी मैं जो है बोर हो जाऊंगी या थक जाऊंगी, पर कोई बात नहीं, अभी गाना एंजॉय करो, मुलाकात होगी अब कल। जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए.
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा.

0: इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर मनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ। ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: पंकज उदास साहब की आवाज में और आहिस्ता कीजिए बातें। धड़कने कोई सुन रहा होगा, खूबसूरत गाना भाई। बातें आहिस्ता करने के लिए तो ऐसे यू नो दीवारों के लिए भी कहते हैं कि वो भी सुन लेती, उनके भी कान होते हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं। मैं तो इतनी लाउड हूँ कि अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है, स्टूडियो तो हमारा यू नो साउंड प्रूफ है तो किसी को पता नहीं चल रहा है, बट इफ आई एम सिटिंग ऑन माई डेस्क, मैं वहाँ बात कर रही हूँ, दूसरे कॉर्नर ऑफ द ऑफिस में भी सुनाई देगा, इतना लाउड है। तो ये वाला गाना मेरे लिए तो बिल्कुल काम कर ही नहीं सकता। वेल, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM। कैसा जा रहा है आपका? How has the day been so far?
1: चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले,
0: डे जैसा भी जा रहा है उसको और बेहतर करने के लिए तो पक्का मैं आ ही गई हूँ, पर जानना भी तो है कि अब तक क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं, लंच अंच हुआ कि नहीं, कहाँ से सुन

यार इस टाइम के जितने भी रिमिक्सेस आ रहे थे ना, लाइक व्हेन दिस सॉन्ग केम, बहुत कमाल रिमिक्सेस थे, मतलब बुरा नहीं लगता था सुन के. अभी जो आ रहे हैं थोड़ा दर्द तो वो दे ही देते हैं. And G, this beautiful track और साथ में खुदाया इश्क रे. फिलहाल इंतजार कर रहे हैं फहीम अब्दुल्ला की आवाज में एतबार फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल, और मैं इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का 3311 1063 पर. स्टे ट्यून्ड, एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: मनाली ठाकुर की आवाज में महाराज मूवी से हाँ के हाँ, ये मेरे टाइप की नेगोशिएशन है, मतलब कि अगर मैंने बोल दिया ये मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए और उसके बाद आपके पास हाँ और हाँ वाला ही ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा मुझे मैसेज चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए और मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ गए हैं। यस, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनिषा आपके साथ। ऑल ओवर टॉक चल रहे हैं यहाँ पर। हाल चाल पूछे थे, मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया है, एज फार एज गुड एंड आप सुनाइए, होप गोइंग गुड। हाँ जी, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सब सही है यहाँ पे भी। और वक्त हो चुका है आज की मोटिवेशन का, तगड़ी वाली। जी हाँ, तो सुनिए, ये बिल्कुल ऐसे वेदर से अलाइन करती हुई लेकर आई हूँ मैं। टू स्टे हाइड्रेटेड, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़े से ज़्यादा ही पियो मैं तो कहूँगी, ठीक है। टू स्टे हाइड्रेटेड, थोड़ा सा पानी पी लो, दुनिया गई तेल लेने, अब थोड़ा खुद के लिए जी लो मेरी जान। हाँ जी, स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू वांट, अभी तक लोगों के लिए करते आ रहे थे ना, थोड़ा अपने लिए भी कर लो, जरूरी होता है यार। और अभी कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।
0: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: Cool song.

0: Tanisha.
1: Adnan Sami sahab ki awaaz mein baatein kuch unkahi si. Beautiful track from the movie Life in a Metro. Aur Life in Qatar is very hot right now. You're listening to Radio Oliver 6.3 FM. Tanisha aapke saath. Oliver recharge chal raha hai yahan par. Aur bhai crazy garmi ho rakhi hai. Matlab AC ka hona nahi hona mehsoos nahi ho raha hai. Aur aaj jab maine news khol ke dekhi to bolte hai ki आज जो स्टार नजर आ रहे हैं उसके बाद से हॉटेस्ट डे शुरू होंगे कतर में. ऐसे कैसे होता है भाई, अब इससे ज्यादा हॉट क्या हो सकता है, पर होने वाला है इवेंचुअली. सो आज से द हॉटेस्ट डेज ऑफ द ईयर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं. सो प्लीज अपना ख्याल रखें मेरी जान, बहुत बहुत सारा पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की जरूरत पड़ रही है वो साथ में रखें, फ्रूट्स ऐसे खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, और खाना एकदम लाइट खाएं क्योंकि बड़ी दिक्कतें हो जाती है और क्रेजी वाली गर्मी हो रखी है. अपना ख्याल रखना तो बनता है, ठीक है. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और बाकी आपको चिल रखने के लिए यहाँ बढ़िया गाने हम चला रहे हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में खुदाया इश्क रे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे। स्टोरी ऑफ द डे।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
3: हाय एवरीवन, इट्स मी डॉक्टर अफसल, नसीम हेल्थकेयर। पीपल आर ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट व्हेन द टूथ टू गेट फिल्ड एंड हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स दैट द टूथ नीड्स टू बी फिल्ड। या इफ यू कैन मेक आउट ब्राउन डिस्कलरेशन और ब्लैक डिस्कलरेशन और अ चॉकी व्हाइट अपीयरेंस ऑन द सर्फेस ऑफ योर टीथ, जस्ट इमीडिएटली कंसल्ट योर डेंटिस्ट एंड गेट द रिक्वायर्ड टूथ और टीथ टू गेट फिल्ड। Filling simply means just removing the caries or damaged portion of the tooth and cleaning the area and restoring the tooth by replacing a material which is biocompatible with the tooth. If you people are capable of undergoing filling treatment in the earlier stage itself, you can just forget that your tooth is getting painful. Usually, all the caries or decay becomes painful in 3 months to 1 year itself. Once you start experiencing pain on your teeth, the treatment is also a bit costlier than doing normal filling. To lead a better dental health, do consult your dentist regularly once in 6 months. Wishing you all have a better health.
2: Doctor on air. Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tepkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
6: Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Retort चल रहा है यहाँ पर. और आसमा मुझसे पूछ रही है, तनीषा आपने खाना खाया? थैंक यू सो मच पूछने के लिए. हाँ जी, मैंने खा लिया पेट भर के एकदम. और शो के पहले मैं खा ही लेती हूँ, सो दैट इस वक्त मैं एकदम फ्री रहूँ आपसे बातें करने के लिए. आपने, आप बताइए, आपने खा लिया कि नहीं आसमा? एंड रेस्ट ऑफ यू क्या कर रहे हैं इस वक्त, कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे सब जानना चाहूंगी. आ जाओ, मैसेज करो. और एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, इफ यू हैवंट, माँ बहन मूवी जो आई है नेटफ्लिक्स पे, देख डालो उसको. बाय द वे, राइट नाउ आई एम वॉचिंग द आर्ट ऑफ सारा. सो इट इज अ के ड्रामा एंड इट इज अ, यू नो, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग. क्रेजी है भाई, बहुत मजेदार है. मैं ऐसे हुक हो चुकी हूँ. मुझे अगर 5 मिनट का भी वक्त मिलता है, लाइक वेन आई एम गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस, मैं उसको चला लेती हूँ. मुझे वो देखना है. पर यू नो, ऐसे एक लंबा स्ट्रेच नहीं मिल रहा है. वीकेंड का इंतजार फिर से कर रही हूँ, समझ ही चुके होंगे आप. सो उस लंबे स्ट्रेच में देख के मैं एक बार में खत्म कर दूंगी उसे. बट इफ यू आर अ फैन ऑफ, यू नो, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर काइंड ऑफ सीरीजेस, सो चेकआउट कीजिए नेटफ्लिक्स पे द आर्ट ऑफ सारा. यस, एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. टू यू बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.
4: हमने लगा और हो जा रिचार्ज. ओलिव रिचार्ज.
5: ओलिव रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
4: ओलिव रिचार्ज.
6: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

शंकर महादेवन और शफकत इमानत अली साहब की आवाज में कभी अलविदा ना कहना मूवी से बहुत सुंदर गाना मितवा ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तरीशा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और भाई क्रेजी चीजें हो रही है दुनिया में, आप सोचोगे कि जो ऑलरेडी हो चुका है इससे ज्यादा क्रेजी तो क्या ही होगा, तो ये हो रहा है। भिंडी एक लग्जरी स्नैक की तरह बेचा जा रहा है यूएस में 7200 रुपीस पर केजी। कैन यू इमेजिन, मतलब भिंडी मेरी तो बहुत ज्यादा ही फेवरेट सब्जी है, हर दूसरे दिन अगर मम्मी पूछती थी तो आई बी लाइक मम्मा वो भिंडी बना दो ऐसी छोटी छोटी चॉप करके, एंड राइट नाउ ऑल्सो आई लव इट, मुझे यू नो लाइक कुछ फटाफट से बनाना है तो आई वुड चूज भिंडी, लेकिन 7200 रुपीस पर केजी लग्जरी स्नैक, वो पार्ट पे मैं थोड़ा सा अग्री कर जाऊंगी बिकॉज यू नो आई हैव लव फॉर इट, लेकिन 7200 रुपीस पर केजी ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इस पे 3311063 पर। बाकी ये लोग ना हमारी सारी चीजें ले लेकर हमें ही इतने महंगे महंगे में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं सब मिलके, समझ रहे हो ना बात को, वो मीम याद आ रहा है मुझे। हाँ जी, सेंडिंग धोखाधड़ी क्या परफेक्ट टाइम पे आया है। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।
4: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: दिशा।
1: अनुज जैन की आवाज में अर्ज किया है ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ। ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और यार जब डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को भी पता होता है ना कि इस मूवी का चल पाना थोड़ा मुश्किल है, एंड और एनीवे धुरंधर ने जो बेंचमार्क सेट किया है उसको ब्रेक कर पाना किसी भी मूवी के लिए मुश्किल, किसी भी मूवी के लिए आसान नहीं है। सो यू नो दे आर ट्राइंग डिफरेंट टैक्टिक्स टू प्रमोट देयर मूवीज। अभी सोशल मीडिया इज द मोस्ट हैंडी टूल टू प्रमोट एनीथिंग एट ऑल, राइट? सो अभी क्या वायरल कर दिया है जवानी तो इश्क होना है मूवी के, यू नो जो भी पीआर टीम है उन्होंने, कि एक बंदे ने पूरा 200 सीट का थिएटर खरीद लिया है, यू नो लाइक बुक कर लिया है टू वॉच दैट मूवी विथ हिज फ्रेंड्स। Are you serious? इतने बुरे reviews आए हैं इस movie के, people are not liking it at all. They're like it's, you know, like the same old thing which has come again in Bollywood. So कुछ नया नहीं है और वही ऑफ टाइम कॉमेडी एंड ऑल, और उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये फेक है। क्या समझते हैं ये, हमें क्यों करते हैं ऐसा? बाकी आप में से किसी ने देखी है जवानी तो इश्क होना है? ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है दिस फ्राइडे जो अभी गया है, तो क्या आपने अपने साथ ये किया कि आप ये मूवी देखने गए? बताएं मुझे आपके क्या रिव्यूज अगर देखी है आपने तो। और सुन रही है रेडियो ऑल जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Dot jal rahe hain. Lame
2: Gems. Lame Gems.
1: Lame Gems ka aaj ka mera lame sawal hai. Ki park, P-A-R-K, park ko kaun rule karta hai? Lame sawal hai, to lame jawab hona chahiye. Aap aise security guard aur aisa kuch watchman, ye wale answers mat dena, theek hai? पार्क को कौन रूल करता है? 3311 1063 पर फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. पार्क को कौन रूल करता है? P-A-R-K पार्क, गार्डन, बगीचा, यस, कौन रूल करता है उसे, ये जानना चाहूंगी. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड.

0: कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में बड़ा सुंदर गाना जानिब फ्रॉम द मूवी दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड से ऑल योर रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर लेम जैम्स का सवाल मैंने पूछा था कि पार्क को PARK पार्क को कौन रूल करता है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है शायद क्योंकि नोबडी इज एबल टू गेट द राइट आंसर लेट मी गिव यू अ हिंट सो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें पार्क वर्ड आता है सोचो जरा PARK नो नेचर इज नॉट द करेक्ट आंसर एंड या गार्ड अंकल इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर बाकी एक ही मुझे सही जवाब आया है अभी तक बाकियों का मैं इंतजार कर रही हूँ तो जरा सोचो पार्क को PARK को कौन रूल करता है आंसर में पार्क वर्ड आता है अब इससे ज्यादा आसान तो मैं और कर ही नहीं सकती थी इसे फटाफट से बताओ 3311 1063 पर और सुनते रहो रेडियो ऑलिव ट्रियो बिंदास मेरी जान रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
3: कूल सॉन्ग ओके रेडी पुट सम कैट सम पुट सम कैट सम

0: Tanisha.
1: हिमेश रेशमिया की आवाज में फिर हेरा फेरी से बहुत ही कमाल गाना, मतलब वाइब भी आ जाती है एकदम से ऐसे वीकेंड वाली, पर वीकेंड तो अभी दूर है, अभी तो हफ्ता शुरू हुआ है यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ, ऑल ऑफ यू जो चल रहे हैं अब। तो मेरा आज का सवाल लेम जेम्स का था कि पार्क को कौन रूल करता है, PARK पार्क। यस, एंड इनिशियली नेचर गार्ड अंकल टाइप्स के आंसर्स आए थे, पर एक दो आंसर्स मुझे करेक्ट ऑलरेडी बीच में आ गए थे, पर जब मैंने हिंट दिया ना कि इसके आंसर में भी पार्क वर्ड आता है, फिर तो जो ऐसे लाइन लगी है भाई एक के बाद एक, सुबीर एंड आसमा संगीता एंड राहुल और आर्काइव, इनका नाम आर्काइव लिखा हुआ है, एंड नीनूज सरताज, अ लॉट ऑफ आंसर्स आर ओवर देयर, एंड सबने करेक्ट आंसर दिया है। यस, द करेक्ट आंसर इज पार्किंग। सिमरन से जब मैंने बाहर पूछा था तो उन्होंने इतना गंदा रिएक्शन दिया था मुझे, तो मुझे पता था कि आज तो यही सवाल पूछना बनता है, और आपने मेरा साथ दिया, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इसी बात पे। एक बढ़िया गाना आपके लिए, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास मेरी जान।

स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।

0: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले दो दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की.
4: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर, दोहा. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक.
3: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
4: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट सोडियम lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of food smell, scents, yeah, always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
3: इस इनिशिएटिव को शुरू करने का हमारा मोटिव था आपको अवेयर करना, लेकिन आप सबके अमेजिंग रिस्पॉन्स ने मेरा दिल जीत लिया है.
5: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है. एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है.
6: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स तो वो पलट के देखें. सो ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट.
3: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha ke saath suna aapne Diljit Dosanjh ki awaaz mein Charmer. All the retard chal raha hai yahan par aur waqt ho chuka hai mere jaane ka meri jaan. Milte hain kal dopahar 2 baje. Aap apna dher sara khayal rakhiyega is garmi ke mausam mein. Stay hydrated, ढेर सारा सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलिए जब भी निकलें और यू नो लाइट खाना खाएं, अपना ख्याल रखें और ऑर्डर करते वक्त भी ख्याल रखें कि जब ऑर्डर कर रहे हैं और खाना डिलीवर हो गया है तो जल्द ही खा लें, उसे ज़्यादा देर रख के और फिर बाद में खाएंगे वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. उससे बहुत ज़्यादा स्टमक इशूज़ हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे हैं. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ मेरी जान, ठीक है. अपने स्वास्थ्य का जो ख्याल है वो तो हमें खुद ही रखना पड़ता है ना, तो रखिए, ठीक है. और बाकी आपके मेंटल हेल्थ का ख्याल हम रख रहे हैं बढ़िया गाने प्ले करके. अभी भेज रही हूँ आपके लिए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ए अजनबी आदित्य रिखारी की आवाज़ में, ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.
2: Radio

0: The Big Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनोम रान. सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल. फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा. अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम रान. वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बे

जैसे ये मरजावा वर्ड गाने में यूज किया गया ना, पंजाबियों का तरीका होता है अलग अलग इमोशंस के साथ इस वर्ड को कहने का. जब वो एकदम इसे सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं हाय मैं मर जा, ओके ठीक है. और अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है हाय मैं मर जा, ठीक है. और प्यार में भी बोलेंगे ओए होए हाय मैं मर जा, ठीक है. सो एक ही लाइन को कहने के तरीके होते हैं. सोचो अगर बेचारे किसी अंग्रेज बंदे को पंजाबी सिखानी पड़ जाए, अब उनको कैसे समझाएंगे कि भाई वर्ड तो ये लाइन तो एक ही है लेकिन इसमें एक्सप्रेशन आपको अलग अलग तरीके से यूज करने हैं. 5:06:15 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है. मैं जी सुने हो कितना देखिए हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन गौर है नाल ठीक हो. गर्मी में कैसा निकला आज का दिन है ना, I'm sure आपका दिन एकदम बढ़िया वाला रहा होगा. लेकिन अगर आज दिन बढ़िया नहीं भी रहा तो कोई टेंशन नहीं है, सारे दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं. भाई बिल्कुल हुलारे जेड़ा मारदा हैगा, ए जबरदस्त इवनिंग का टाइम शुरू हो चुका है. उन 4 घंटे अपने ही हैं. साथ ही रहना, आपको जो काम करना करिए, गाड़ी में सुनिए, घर पे सुनिए, एप्लीकेशन के थ्रू सुनिए, बट सुनिए जरूर. अपना दिन बताने के लिए आज का और गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजने के लिए 3311063 पे व्हाट्सएप कर दो यार.

देखो यार, ये जो है ना म्यूजिक के बाद मेरा आना आपके लिए, एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मुझे बात भी करना, और मैं गाने में जो थी वो बहुत सारा खो गई थी। अभी फिलहाल आपके लिए एक नंबर गाने तो चल ही रहे हैं, अंगड़ाई वाला गाना चल के हटा है, हुलारे वाला गाना बस ऑन योर वे।

सोने की तक की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल रमता जोगी एक नंबर गाना जो है वो आप सुन रहे हैं और एक नंबर बात आज मैं सुबह से सुन रही हूं कि आज जो है वो इंडिया में आप अरोरा जो है वो देख पाएंगे, नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखने वाली है। सो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि कहां कहां पे ये इंडिया में दिख सकती है, हो सकता है ये लद्दाख जम्मू कश्मीर वगैरह में यहां पर दिखाई दे, जहां पर हम इतने पैसे देकर इतने लाखों देकर लोग जो है नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए जाते हैं, वहां पर ब्राइट अरोरास जो है वो आज इंडिया में दिखाई दे सकते हैं। सो या मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूं, तो जो इंडिया वाले हैं अगर वो देख पाए तो यही पे ट्रिप हो जानी है आपकी।

0: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जी ओम विंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: का अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस
2: जीतने के चार रास्ते पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन
1: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है
2: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
3: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लमर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए सर्टिफाइड बनिए सर्टिफाइड के साथ बनिए
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

कुर्बान। भाई ने पूरा जोर लगा दिया बाकी यार। 5:33:40 स्टूडियो की घड़ी पे सोने की तरह की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। यार ये गाना काफी ज्यादा अंडररेटेड है।

अलका याग्निक ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गा दिया और उसके साथ साथ नौटंकी साला से देते और सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं हम अभी फिलहाल के लिए। अब बेइज्जती आपकी तब हो जाएगी जब आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन सही है। आप हाफ इन्फॉर्मेशन ना जो है ना वो हमेशा खतरनाक होती है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। सो ऐसे टाइम पे जो भी इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रहा है ओ माय गॉड अगर इसको अपलोड करने से मुझे अच्छे व्यूज मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या आप वर्बलाइज कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, सो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बोला है कि भाई जो वेरीफाइड न्यूज नहीं है उसको आप अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हो और बाद में वो गलत निकली तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो मैंने सोचा आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार है यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव आपको जो भी बताता है ना वो सही बताता है, तो हम पे भरोसा रखिए।

हर सॉरी काफी नहीं होती है, रियलाइज करना चेहरे पे वो बात होनी चाहिए कि हाँ आप सॉरी हो। कई लोगों को सॉरी बोलना बहुत जहर लगता है, कई लोग सॉरी जो है वो बोलते ही नहीं है। उसमें से मेरा एक्स भी था, वो सॉरी कभी नहीं बोलता था भाई, भाई अलग लेवल का इंसान था। खैर मैं आपकी बात करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मतलब हमारी फैमिली में या मम्मा ने, हमारे मॉम डैड ने ऐसे रेज किया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है आप सॉरी बोल दो यार। और थैंक यू बोलना भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मेरी मम्मी ना, मेरी मम्मी के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई कुछ कर रहा है या हम कर रहे हैं, वो बहुत बार थैंक यू बोलती थी यार। और सॉरी तो हम सब के मुँह पे है कि यार अगर गलती की है तो सॉरी बोलिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे सॉरी बोलते हैं, सॉरी लाइक दे डोंट मीन। जब आप सॉरी बोल रहे हो तो भाई दिल से बोलो।

इस लम्हे में टेम्परेचर की तरह चेक कर ले। डिग्री अब तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 43 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम है 33 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी है 12% एंड विंड जो है 20 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ये है मौसम के हाल। लेकिन अगर आप अपने हाल सही रखना चाहते हो, हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पीते रहिए एंड शांत रहो यार, थोड़े ठंडे रहा करो, दिमाग ठंडा रखा करो। 2 1 एंड गो।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

हमेशा मुझे वीकेंड वाली फील देता है. लेकिन इट्स मंडे, उस दिन नहीं है. मैं ऑफिस में भी बात कर रही थी यार, मतलब आज मंडे ही है क्या? और कल भी मैं यही बात कर रही थी, आज संडे ही है क्या? 6:06, 50 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे. इंडिया के एक आइसक्रीम पार्लर ने एक ऐसी आइसक्रीम की फ्लेवर को लॉन्च किया है जो मैं सुन के मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आपको सुन के अजीब लगेगा. क्या आप उस अजीब आइसक्रीम को खाना चाहेंगे? सो ये आइसक्रीम की फ्लेवर है बिरयानी फ्लेवर. यस, जो कि बिरयानी की तरह टेस्ट करती है. लाइक क्यों क्यों क्यों, वाई वाई वाई, कपनी टिक्के वाली आइसक्रीम भी बना दो यार, पिज्जा वाली आइसक्रीम भी बना दो यार, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं ये जो बिरयानी फ्लेवर वाली आइसक्रीम को टेस्ट करना चाहेंगे? आपका क्या कहना है इसके बारे में? बन जाइए रिपोर्टर और बताइए मुझे 3311063 पर. सुंदरी रेडियो वाले घर के तेरे जियो बिंदास. बिरयानी आइसक्रीम, लाइक सीरियसली, चिकन के टुकड़े भी डाल दो उसके अंदर, कच्च कच्च करके खा जाना.

0: Seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Socho, agar saving se aap ban jao millionaire, Commercial Bank ke Save and Win campaign mein bhaag lijiye.
2: Har 10,000 Qatari Rial saving growth pe milega ek coupon. Ya sirf 50% salary save karo and enter the draw.
1: New customer ho, to account kholo aur first salary transfer pe guarantee. Guaranteed chance to win.
2: और 9 महीने की consistent salary transfer के साथ mega draw में entry पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या? अगले millionaire आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो savings. Commercial Bank. Save and win.
3: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: This hour is brought to you by
9: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: बिल्कुल कुड़ी सैटरडे सैटरडे जैसे बोल रहे हैं ना सैटरडे ऐसे करके स्टाइल में, लेकिन हम पंजाबी लोग हैं, जब पंजाबी लोग अपने तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं आप सैटरडे कर देने हमने, ठीक है। 6:17 से 37 सेकंड स्टूडियो की कड़ी दोगे और बात कर रहे हैं। इंडिया की एक आइसक्रीम पार्लर ने एक नया फ्लेवर जो है वो आइसक्रीम का लॉन्च किया है, जिसका फ्लेवर है बिरयानी आइसक्रीम। ओ माय गॉड। सो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ये बिरयानी आइसक्रीम ट्राई करना चाहेंगे?
1: Hello, good evening, Radio Olive. This is Saida. Biryani ice cream, that's too much of experimenting. Nah. बिरयानी तो बिरयानी ही ठीक है, उसे आइसक्रीम ना बनाएं प्लीज।
0: मेरा भी यही कहना है, मेरे भी यही जज्बात हैं। तो आप में से जितने भी बिरयानी लवर अभी मुझे सुन रहे हैं, क्या आप ये बिरयानी अपनी आइसक्रीम में खाना चाहेंगे? बिरयानी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ओ माय गॉड, सोच के कुछ अलग सा हो रहा है। और जो मेरी फ्रीजर में पड़ी है ना शुगर फ्री हेजल नट आइसक्रीम, मैं उसको अब बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ यार। सो बताइए आप ये ट्राई करना चाहेंगे 3311063 पे वॉइस नोट भेजो यार।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलवार प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: Story of the day. Story of the day.
1: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।
2: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabak Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। Experience more with ओरिडू।
4: The big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: This hour is brought to you by...
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: I'm the number one, Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one, Asian Radio Network.

0: बाहर के मौसम के हिसाब से गाना चलाऊं। बैंड बजी हुई है सबकी, लेकिन चाय हम नहीं छोड़ेंगे यार। ये बात कतर की बेस्ट लगती है भाई, जो चाय लवर है कड़क पीते हुए मिलेंगे 50 की गर्मी में भी।
1: जेंजी डिकोडेड ऐसे है क्या?
0: दादा दादा। तो ये जो स्कल इमोजी होती है जो जेंजी इसको यूज करते हैं, उसका मतलब भूत नहीं होता है। स्कल इमोजी का मतलब जो है वो ये होता है, लाइक आई एम डाइंग, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा भसड़ मच गई है, कुछ ऐसा भयंकर हो गया, तो आप स्कल इमोजी जो है वो भेजते हैं। सो उसका मतलब वो होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी जेंजी से चैट कर रहे हैं, अगर वो आपको ये भेजे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पे पहुंचना है, वहां पे भूत आ गया है या वो भूत बन गए हैं। सो या इट्स लाइक आई एम डाइंग, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस वो इमोजी आप भेज दीजिए। जेंजी डिकोडिंग में हमने किया आज इसको डिकोड। और बताओ क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है अभी, क्या कर रहे हो? ऑफिस वॉफिस निपट गया ना? ज्यादा देर तक मत बैठा करो यार, निकल रिया करो, फन किया करो, ताकि आपको जबरदस्त इवनिंग्स अपनी गाड़ी में बैठ के सुनने का मजा आए। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कर, कहते रहो जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah,

0: अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो ये गाना आपको फील देगा। अगर आपका दिल ऊपर से टूटा हुआ है, ओए होए होए, मजे आ जाएंगे।
1: ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल।
0: और ये गाना बोनस की तरह काम करेगा।
1: तेरे इश्क ने यारा ऐसा नाच नचाया, तेरे इश्क ने यारा ऐसा नाच नचाया।
0: एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं। मैं क्या जी सोने हो गया दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौरी आपके साथ। थोड़ी देर पहले जिसे हम बात कर रहे थे ना, चाहिए चाय गर्मी जितनी मर्जी हो जाए, जो टी लवर्स है ना भाई, उन्होंने चाय पीनी पीनी है। सो ऐसे टाइम पे मैं आप लोगों की चाहती हूँ कि हेल्थ जो है ना वो बढ़िया रहे। आप थोड़ा सा अपना चाय पीते हुए ध्यान रखिए। ये पेपर कप्स जो है ना, रिसेंटली मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि ये जो पेपर कप्स हैं उसमें जब आप चाय पीते हो ना तो इट्स नॉट गुड। ओके, इसमें हाई हीट की वजह से जो कप का इनर प्लास्टिक और वैक्स लाइनिंग जो भी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि आप चाय के साथ पीते हो। सो ट्राई करो कि चाय पीने का शौक सबको है, बट जो सेरेमिक मग्स होते हैं, ग्लास कप्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील्स होते हैं, ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया। टम्बलर्स हो गए है ना, ट्रैवल मग्स हो गए, अब अपनी गाड़ी में रखिए, अपने पास में रखिए, जब भी आप चाय डलवा ले उतनी चाय डलवा लीजिए और उसी में आप चाय पीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चाय का स्वाद हेल्थ के साथ साथ मतलब सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ना यार। सुंदर रेडियो ऑलिव गोर के दरो जियो बिंदास।

भाई साहब, व्हाट अ ट्रैक यार, सोनू निगम ने बवाल काट दिया यार इसमें। 7:20 और जब बात मोहब्बत की आती है,

0: वो देने पड़ेंगे एंड दैट्स इट, गुड टू गो. और उसके साथ साथ इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप जो है अप टू 15% गोल्ड प्राइजेस पर यहां पर सेव कर सकते हो. सो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम विजिट करिए और अपने समवन स्पेशल को स्पेशल फील कराइए.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ.
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: भाई साहब इश्क को इतना बुरा भला कह दिया, इश्क के बगैर रह भी नहीं सकते यार। ऐसे सोच रही थी, एक थॉट आ रहा था कि यार चलो ये थॉट इसी में बता देते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: कुछ लोगों की एक आदत होती है कि वो अपने तरीके से बाकी दुनिया को जो है वो चलाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो कोई चीज नहीं करते हैं, अगर वो कोई चीज नहीं खा रहे हैं या पी रहे हैं, वो चीज उनके लिए बुरी है तो बाकी लोगों के लिए भी बुरी होगी। वो अपने तरीके से सामने वाले को चलाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं। देखो, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना जीने का, खाने का, रहने का, काम करने का, सबका अपना अपना तरीका है। तो कभी भी किसी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आपकी जो आदतें हैं, ठीक है, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, जो दूसरों की आदतें हैं वो दूसरों के हिसाब से। इसीलिए देखो, अपनी लाइफ पे आपका अपना हक है, दूसरों की लाइफ पे आपका कोई हक नहीं।

ਤੋੜਿਓ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਗਾਏ ਚਲੋ ਖੇਲਦੇ ਹੈਂ। देखिए दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अब्बी के अब्बी, मतलब आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे अपना नाम लिख के भेजो, मैं आपका नाम अब्बी के अब्बी लिख के बोल दूं यहाँ पर, तो आपको मुझे लिख के अपना नाम भेजना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप मुझे अपना नाम लिख के भेजिए। चलिए अब मैं आम नाम पढ़ने जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। जुनेद, शिव, रियाज, फारा चांद, रिफत, रिफत हमेशा लिखती हैं, हेलो सिमरन बेस्ट चार्जर, बड़ा अच्छा लगता है यार। रबानी, शिवा, मकसूद, दानिश, जुल्फिकार, भूपेंद्र, फवस, जुनैद, रियाज, बलोच, मोहम्मद यूसुफ, अमर थापा जी, सूरज जी, थैंक यू सो मच, रिहाना जी, सबीना जी, क्रिस, भूपिंदर, थैंक यू सो मच आपके, जुल्फिकार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, टीके जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जिनका नाम मैं बोल दूं यार, वो बार बार नाम ना लिखो, कंफ्यूज हो जाती, बेचारे दूसरे रह जाते यार। तौकीर जी, थैंक यू सो मच, अमर जी, थैंक यू सो मच, अजरुद्दीन जी, थैंक यू सो मच, नबील कुरैशी जी, थैंक यू सो मच, नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एरन जी, थैंक यू सो मच, सुमन जी, थैंक यू सो मच। फटाफट से सिर्फ और सिर्फ नाम दोस्त, कोई मैसेज मत लिखो यार। सीमा जी, थैंक यू सो मच, सीवा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, वसीफ जी, मोहम्मद अली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मलिका जी, थैंक यू सो मच, तनवीर जी, थैंक यू सो मच, खान साहब, थैंक यू सो मच। अब आप लोग अभी थैंक यू मत लिखो यार, मैं मौका दूंगी आपको लिखने का, कहीं नहीं जा रहे आप लोग। ताहिर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नियाज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिखिए और बना दीजिए अपना फेवरेट वाला कोई भी इमोजी, साथ में भेज दीजिए।

0: ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एडबिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर मनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल फैल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फैल्कन फिटनेस बिन उमरान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
1: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट Carmel Group now. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: जाए तो कहना, पता क्या कहना, किदा जी की हाल चाल। हां जी बिल्कुल जबरदस्त इवनिंग्स में सिमरन के साथ हैं आप एंड हम खेलने वाले हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: आज कल काफी ज्यादा टफ हो गया था आप लोगों के लिए, आज मैंने थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है और ये एक चुटकी सॉन्ग जो है वो सिर्फ एक ही सेकंड का सॉन्ग है जो कि आपने सुनना है और मुझे बताना है ये कौन सा गाना है। बस एक बार और बताओ ये कौन सा गाना है, एक चुटकी सॉन्ग वाला। सो आपको वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है डार्लिंग, प्लीज मुझे लिख के मत भेजना, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ यार। सो वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए, हे सिमरन अपना नाम बताइए और बताइए गाना कौन सा गाना, गाना चाहे तो भी चलेगा, नहीं गाना है बताना चाहे तो बता दीजिए। 3311063 पर इंतजार कर रही हूँ आने वाले गाने।

0: रेडियो ऑलिव को कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਕਿਊਟ ਹੋ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਹੋ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਂ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ
2: बहुत बढ़िया बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको एक चुटकी ये सॉन्ग सुनाया था और आप लोगों के जवाब सुनते हैं।
3: Hey Simran,
0: hi,
3: how are you?
0: I'm good.
3: Good evening.
0: Very good evening.
3: This song is a Jingat from Dharak One.
0: Okay. Thank you.
4: Hi Simran.
0: Hi.
4: This is Vandana Raj. और वो एक चुटकी सॉन्ग था जिंग जिंग जिंग जिंग जिंगट जिंग जिंग जिंग जिंग जिंगट पूरे लिरिक्स नहीं मालूम है
0: क्यूट
4: पर जिंगट सॉन्ग था
0: ओके
4: जियो बिंदास
0: जियो बिंदास डार्लिंग
3: हाय सिमरन
0: हाय
3: दिन दिन दिना फ्रॉम सड़क
0: सड़क नहीं धड़क हो गया बेबी और सिंगट सिंगट का आप लोग ना सच्ची में बड़े क्यूट हो यार बड़ा बधाइयां मिठाइयां ने बहुत सारे बढ़ा गए आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं और जिस तरह से आप लोगों के वॉइस नोट्स मुझे खुश करते हैं और जिस तरीके से आप लोग भेजते हो और इतने प्यार से आप सुनते हो और आप हमें मिस भी करते हो यार
5: ऑलिव रेडियो नमस्कार
0: नमस्कार
5: मैं विलियम बात कर रहा हूँ सिमरन जी आपको बहुत बहुत मैं मिस किया है मैं गोवा में था अभी आया है आपका वॉइस सुन के बहुत अच्छा लगता है आपका म्यूजिक बहुत प्यारा आप बजाती है सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है आपका म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है
0: मुझे भी
5: जियो बिंदास
0: हो गया फिर उन्होंने एक और भेजा
5: ऑलिव रेडियो नमस्कार नमस्कार सिमरन जी
0: जी
5: आपका वॉइस आपका म्यूजिक सुन के बहुत अच्छा लगता है आपका प्यारा सा वॉइस
0: अरे
5: पूरा दोहा हिलाता है और आपका म्यूजिक अपना
0: थैंक यू सो मच विलियम जी बड़ा अच्छा लगा आप जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप मुझे सुनते हो मुझे पता है और जो आपके दिल में है वो बता दिया करो ऐसे विलियम जी की तरह मुझे भी अच्छा लगता है यार

0: Alif Bey. Story of the day. Story of the day.
1: अगर ओशन एक एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्स अवार्ड जीत चुका होता। ऑक्सीजन भी दे रहा है, क्लाइमेट भी बैलेंस कर रहा है और बिलियन लोगों की लाइफ भी सपोर्ट कर रहा है। फिर भी सबसे कम अप्रिसिएशन उसी को मिलता है। इस वर्ल्ड ओशन डे एक थैंक यू उन लहरों के नाम जो सिर्फ किनारा नहीं छूती, पूरे प्लैनेट को जिंदा रखती है। द ओशन डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड द ओशन। हैप्पी वर्ल्ड ओशन डे।
0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio
2: Olive, Gio Bindas. Falcon Fitness Health Club की 6th branch grand inauguration हुई एक जबरदस्त celebration के साथ at Bino Brand. Celebrity guests Shane Nigam, Anna Rajan, Sia Saleem और Roshan Bashir ने मिलकर बनाया इस शाम को truly unforgettable. Falcon Fitness ने शुरू किया एक नया chapter in Doha. अगर आप भी fitness journey को next level ले जाना चाहते हैं, visit Falcon Fitness Bino Brand. One family, one mission, unstoppable.
1: Hi everyone, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले दो दिनों से हमारा initiative जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की।
3: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर दोहा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक।
1: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
3: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट, सोडियम lauryl sulfates. It can be extremely harsh. And the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of food smell, scents always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
1: इस initiative को शुरू करने का हमारा motive था आपको aware करना, लेकिन आप सबके amazing response ने मेरा दिल जीत लिया है।
4: I think ये segment मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है, एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखें। सो ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट।
1: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट।
0: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: कहेंगी यार मैं 5 बजे आऊंगी जबरदस्त इवनिंग्स लेके, आज के 4 घंटे फिनिश हो चुके हैं, अगले 2 घंटे जो है वो आप मिडनाइट लाउंज को दीजिए। सो अभी के लिए खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बैठने वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour ye gaana।

Good evening, Qatar. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. Aaj raat ek choti si confession karte hain. Hum sab actors hain, hai na? मतलब फिल्म वाले एक्टर्स नहीं, रियल लाइफ वाले एक्टर्स. क्योंकि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर सीक्रेटली बहुत फ़र्क पड़ता है. किसी ने आपको मैसेज इग्नोर कर दिया, इतना फ़र्क पड़ता है कि क्या ही बताऊँ. ऑफिस में किसी और को अप्रिसिएशन मिल गया, फ़र्क नहीं पड़ता. पर किसी दोस्त ने बिना बताए प्लान बना लिया, फ़र्क पड़ता है. सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ आपसे बेटर लग रही है आपको, तो फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन सच क्या है? फर्क पड़ता है. और शायद उसमें कोई बुराई भी नहीं है यार. मतलब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए भाई, उससे बिलोंगिंग्स भी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए. और हम सब चाहते हैं कि कोई हमें देखे, समझे और अप्रिशिएट करे. प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें हाइड करना शुरू कर देते हैं. स्ट्रांग बनना और नम बनना, दोनों में ना अलग चीज़ें हैं. तो आज रात एक सवाल है आपसे, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप हमेशा कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल के किसी कोने में जब आज भी आपको लगता है कि आप फर्क तो पड़ता है. मैसेज कीजिए 3311063 पर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस मिडनाइट लाउंज. सो कभी कभी जिंदगी बदलने में साल नहीं लगते, बस दो मिनट लगते हैं. एक फोन कॉल, कोई एक इंटरव्यू, कोई एक मैसेज, बस कोई एक हाँ और फिर एक ना. हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ के बड़े चेंजेस बड़े डिसीजन से आते हैं, लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि कहानी किसी बहुत बड़े दिन से नहीं, एक छोटे से मोमेंट से बदली थी. शायद किसी ने हिम्मत करके एप्लीकेशन भेजी थी, शायद किसी ने एक सिटी छोड़ दी थी, शायद किसी ने इंसान को किसी को माफ कर दिया था और उसके बाद पूरी डायरेक्शन ही बदल गई. इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त हमने कभी सोचा नहीं, हमें पता नहीं होता कि ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उस वक्त तो वो एक नॉर्मल दिन लगता है, जैसे कि आज का दिन है. बस बाद में समझ आता है कि कहानी यहीं से बदली थी. तो आज रात का सवाल ये है कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा टाइम था, वो कौन से दो मिनट थे जिसने आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आए. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल। फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा। अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

जैसे हम सुनते हैं कि लाइफ अपग्रेड हो रही है, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नई गाड़ी, बड़ा घर, बेटर सैलरी और मे बी लेटेस्ट फोन। लेकिन जिंदगी के सबसे पावरफुल अपग्रेड्स अक्सर ना Amazon पर नहीं मिलते या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर पर या किसी शॉपिंग से नहीं मिलते। कुछ लोगों की लाइफ तो बेटर हुई जब उन्होंने रात को टाइम पर सोना शुरू किया। कुछ लोगों की बात तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बना लिया। कुछ लोगों की तब जब उन्होंने हर बात का जवाब देना बंद कर दिया। और कुछ लोगों की तब जब उन्होंने खुद को कंपेयर करना छोड़ दिया। अजीब बात यह है कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया ऐड नहीं करना होता, बस कुछ चीजें हटानी होती, अनलर्निंग जिसे कहते हैं। और ये मैंने एक्चुअली कतर आके ही सीखा है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि यार आता है सब कुछ, हो जाएगा मैनेज, पर पता चला कि आता तो है बट कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो अनलर्न करनी थी, वो की मैंने। तो आज रात का सवाल आपसे भी यही है कि आपकी लाइफ का सबसे अंडररेटेड अपग्रेड कौन सा है, कौन सी छोटी सी हैबिट या डिसीजन जिसने सब कुछ बेटर बना दिया। 3311063 इज माय व्हाट्सएप नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

So every day I try to talk about one book. मुझे ऐसा लगता है कि हम सब किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कई सारे नए वर्ड सीखते हैं. लोग किताबें पढ़ते ही इसलिए हैं सो दैट वो नई चीज़ें सीख सकें. सो आज ऐसी एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेंस सर्च फॉर मीनिंग. इस किताब के ऑथर जो हैं विक्टर एक साइकेट्रिस्ट थे. उन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल वक्त को देखा था उनके हिसाब से, लेकिन उस सब के बीच उन्होंने एक बात समझी कि इंसान मुश्किलों से नहीं टूटता, मीनिंग के बिना टूट जाता है. अगर कोई मतलब नहीं है ना इस दुनिया में तो टूट जाता है. जब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है तो मुश्किलें भी झेल जाते हैं, और जब मतलब खो जाता है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लग जाती है. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Midnight Lounge. शायद इसीलिए कुछ लोग सेम सिचुएशन में भी होपफुल रहते हैं और कुछ लोग सेम सिचुएशन में बहुत थक जाते हैं. तो आज का सवाल भी आपसे यही है कि आपको सुबह उठकर मेहनत करने की वजह क्या मिलती है, आपको क्या लगता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से आप ये दिन शुरू करना चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ. आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है? 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindaas.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आपको पता है द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन यू एवर मेट वो जरूरी नहीं है कि बहुत फेमस कोई सेलिब्रिटी हो तभी इंटरेस्टिंग हो. कभी कभी आपकी एक राइड में आपको कोई यू नो टैक्सी ड्राइवर ऐसा मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कभी कोई यू नो कड़क चाय आप पीने गए और आपको कोई अनजान व्यक्ति मिल गया जो बहुत ही अच्छा है. कभी कोई स्कूल टीचर, कभी इम्पोर्टेंट कोई पर्सन आपको एयरपोर्ट पर मिला और कोई मतलब बहुत ही स्ट्रेंजर और उसके बाद आपकी दोस्ती हो गई. और अजीब बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलते हैं लेकिन सालों तक ना याद रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कोई लाइन बोली होती है, कोई पर्सपेक्टिव दिया होता है, कोई या फिर सिर्फ एक काइंडनेस दिखाई होती है जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई कैरेक्टर तो ज़रूर होता है जो ऑफिशियली इम्पॉर्टेंट नहीं था लेकिन कहानी में बहुत इम्पॉर्टेंट निकला. तो आज रात का सवाल भी आपसे यही है कि आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आपको कौन सा लगा पिछले कुछ दिनों में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और बताइए कि उस इंसान ने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आपको लगा कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले दो दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की।
2: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर दोहा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक।
3: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
2: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट सोडियम लॉरेल सल्फेट्स। इट कैन बी एक्सट्रीमली हार्श एंड द सेकंड वन इज मोस्टली प्रिजर्वेटिव्स। इट कैन समटाइम्स रिजल्ट इन सिवियर एलर्जिक रिएक्शन। वी ऑल फॉन्ड ऑफ फूड स्मेल सेंस ऑलवेज, राइट? एंड इट कैन कॉज सम सीरियस रिएक्शन। ऑलवेज गो फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच इज अनसेंडेड एंड लुक फॉर द लेबल व्हिच इज फ्रेग्रेंस फ्री।
1: इस इनिशिएटिव को शुरू करने का हमारा मोटिव था आपको अवेयर करना, लेकिन आप सबके अमेजिंग रिस्पॉन्स ने मेरा दिल जीत लिया है।
4: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है, एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है।
5: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट तो वो पलट के देखे। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट।
1: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट।
6: पलट मेरे यार,
7: grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

You know, जब हम किसी नई जगह पर मूव करते हैं, जैसे कि जब मैं 2 साल पहले यहाँ पर आई थी, तो हम बहुत सारी चीजों के लिए ना मेंटली प्रिपेयर होते हैं, नई जॉब, नई जगह, नए लोग, लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसने जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता, मतलब कोई अकेलेपन के लिए प्रिपेयर नहीं करता। किसी को लोनलीनेस बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाता है, किसी को यू नो फेस्टिवल्स याद आने लग जाते हैं, किसी को फैमिली इमरजेंसीज में दूर रहना पड़ता है, किसी को दोस्त बनाने पड़ते हैं जो कि मिल नहीं रहे होते, और किसी को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लाइफ अब वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हम एडजस्ट करते हैं, स्ट्रांग बनते हैं और एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है किसी एक से दोस्ती करने में, और फिर एकदम से ऐसा होता है कि यार अब अगर ये कहीं चली गई या ये कहीं चला गया तो लाइफ फिर से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, एडजस्ट करना फिर से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऐसे में फिर समझ में आता है कि यार अब फिर से नई चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक नया वर्जन फिर हम क्रिएट करते हैं। तो आज मेरा सवाल भी आपसे यही है काता डायरीज में कि जब आप पहली बार घर से दूर आए थे तब सबसे डिफिकल्ट चीज़ आपको क्या लगी थी, क्या आपने उससे यू नो हैंडल कर लिया था और कैसे हैंडल किया था। 3311106 इज माई नंबर। आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप वॉइस नोट भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 3311106। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो आज की रात को भी किताब समझते हैं और आप उस किताब के मेन कैरेक्टर हैं। अब सोचिए कि अगर आज का दिन एक चैप्टर होता तो उस चैप्टर का टाइटल क्या होता? स्टिल वेटिंग, स्मॉल विक्ट्रीज, ट्राइंग अगेन, या फिर लर्निंग टू लेट गो, वन स्टेप क्लोजर, और शायद नॉट माई बेस्ट डे बट आई शोड अप। पर मुझे लगता है कि हम सब अपनी जिंदगी को पूरी किताब की तरह देखते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं, लेकिन जिंदगी चैप्टर बाय चैप्टर जी जाती है तो शायद थोड़ी आसान लगने लग जाती है। सो क्योंकि हर चैप्टर परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर चैप्टर जरूरी होता है, तो आज रात जाने से पहले बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर आज के दिन को आपको कोई टाइटल देना हो तो याद रखिएगा कि आपने कुछ तो ट्राई किया है और मेहनत तो की है, बस उस मेहनत को रंग लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो उस टाइम को दीजिए और बस अपना ख्याल रखिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
4: Hi everyone, मैं हूँ आपकी कशिश और पिछले 2 दिनों से हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे पलट के देखें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. कल हमने बात की थी खाने पीने की चीजों की और आज हमने बात की स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की.
5: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनिला, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आस्ट मेडिकल सेंटर दोहा. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू लुक एट द कंटेंट्स व्हिच इज रिटन वेरी क्लियरली एट द बैक.
6: सो व्हाट आर द की रेड फ्लैग्स दैट वी शुड लुक फॉर व्हेन वी आर बाइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स?
5: सो फर्स्ट ऑफ इट इज द हार्श सोप्स व्हिच इज नॉर्मली रिटन एज सल्फेट सोडियम lauryl sulfates. It can be extremely harsh, and the second one is mostly preservatives. It can sometimes result in severe allergic reaction. We all fond of food smell scents, yeah, always, right? And it can cause some serious reaction. Always go for a product which is unscented and look for the label which is fragrance free.
4: इस इनिशिएटिव को शुरू करने का हमारा मोटिव था आपको अवेयर करना, लेकिन आप सबके अमेजिंग रिस्पॉन्स ने मेरा दिल जीत लिया है.
7: आई थिंक ये सेगमेंट मैंने कभी भी पहले रूढ़ी पे नहीं सुना है. एकदम यूनिक और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाला है.
8: वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पलट के देखें एक्चुअली, एंड अपने बच्चों को भी सिखाए कि व्हेनेवर दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स वो पलट के देखें. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव रेडियो ऑलिव. यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू कशिश, यू गाइस आर रॉकिंग इट.
4: नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए होंगे एक और नए एक्सपर्ट. पलट मेरे यार.

0: ठीक, बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना।
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल

0: तो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दू गया।

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है,
1: व्हाट अबाउट यू?
0: हाय लिख के दूं क्या?
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओली 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।